फिर तृप्त ना कबहू होय। प्राण पड़े सुन थाटा बिन रस रहते मन बहु नाट। जो चादर का जल प्रेम प्यासा जो मीन जल माहि उलासा। नानक हर रस पी तृप्ता सा गोड़ी महला पहला। हट कर मरे नले।

बोत सागर नहीं बाट। बिन गुर सेवे काट काट तिसको वाह वाह हो जे वाड़ दिखावे, तिसको वाह वाह हो जे शब्द सुनावे, तिसको वाह वाह हो जे

सच पाइए, हमें जाए परम पद पाइए राव। हमें कर राज बताव है, हमें खपे जन्म मर आवे, हमें निबरे गुरु।

चाकर चुकाव जित है तिति त्यो नाही गुरु ज्ञान भेट गुण गाही हम बंधन बंध पवाव नानक राम भगत सुख पाव गुण महला पहला प्रथम ब्रह्मा काले कर आया जो जो काल सुंगारिया हम हर राके गुर शब्द विचारिया रहो माया मोह दे विशब देवा काल न छोड़ बिन गुर की सेवा ओ बना सी लख भेवा

हृदय साच वसे हर नाय काल न जो सके गुण गाय नानक गुरमुख शब्द समाए गोड़ी बाला पहला बोले साच मिथ्या नहीं राय चल गुरमुख कुमर जाय रहे है तीर्थ सच्चे सरनाई सचगर बैस काल न जो है मन में को आवत जावत दुख मोह रहाओ अबे पियो अकथ अकथ रही है निज कर बहस सहज कर रही है हर रस माते यो सुख कही है गुरमत चाल ने चल नहीं डोले गुरमत साच सहज हर बोले।

रह निरालम एका सच करनी परम पद पाया सेवा गुर चरणी मन दे मन मान्या चुकी अहं ब्राह्मणी इन बिद कौन कौन नहीं तारिया हर जस संत भगत निस्तारिया प्रभाए हम अवरन पारिया साज महल गुर लख लखाया नेचल महल ने साया माया सास दोह के परम चुकाया जिन कै मन वस्या सस सोई।

ज्ञान विचारा बिन उपमा जगदीश की बिन सेना दिहारा जग बिन सदाम देखिया लोभे अहंकार गुरसेवा प्राप पाया साच मुक्त द्वारा निज कर महल अपार।

दसना परे अंकारी अपने चुने बाजी हारी कपड़ पहर करे चतुराई माया मोहि आत परम भुलाई बिन गुर सेव बहुत दुख पाई नाम रत सदा बैरागी गुरियंत्र सच लिवलागी नानक सतगुर सेवे से बड़ भागी गुड़ी महला तीजा

पराला तत न जिने बन्ने हैं पंड पराला मन मुख अज्ञान कुमार्ग पाए हर नाम सारे आप कर्म दृढ़ आए पवजल डूबे दूजे पाए

साहब ने वह अनंदन पूज कराही। सहज गुण रवे सच मन माही, पुर सदगुर सब सुनाया, त्रिगुण मेट चौथ जत लाया, नानक हो मैं मार ब्रह्म मिलाया। गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा वेद पढ़े बाद बखाणे, अंतर ताम से आप न बछाणे, तब पाए गुर शब्द बखाणे।

सब जग जेता इनमें कुशल तेरे में रमेता सतगुरु सेवे सफल पाए हिरदा नाम बिच आप गवाए अनबाणी शब्द बजाए सतगुर दे कमन कमन सीधो मेरे भाई भगती सीधे दर सुबह पाई नानक राम नाम बड़े आई गौड़ी महला तीजा।

सर्वदृष्ट निर्मल चले सदगुरु पाए हर प्रभु दाता एक तू तू आपे बख्श मिलाए जन नानक सरणा आगत जो पावे तिवे छाए रागुड़ पुरब महला चौथा।

ताकत बेसवा पूत नाम बिन सिमरन जस सेंग सतारा बोले कूर साकत मुख कारा बिन सिमरन गर्दब के न्याय साकत थान प्रहट फिराहे बिन सिमरन कुकर हर का आया साकत लोबे बांध न पाया बिन सिमरन है आत्म का आती है साकत नीच तिस कुल नहीं जाती जिस भया कृपाल तिस सत्संग मिलाया कोनन गुर जगत तराया गौड़ी माला पंजवा गुरगे बचन मोहे परम गत पाई गुरपुरे मेरी पैज रखाई गुरगे बचन त्यायो मोहे नाम गुरप्रसाद मोहे मिले था रहाओ गुरगे बचन सु

के बचन मिटिया मेरा भरम, गुर के बचन पेख्यो सब ब्रह्म, गुर के बचन किनु राजोग, गुर के संग तरिया सब लोग, गुर के किनु राजोग, गुर के संग तरिया सब लोग।

समाय सुंदर सुगड़ चतुर जी दाता भाई पूत पिता प्रभ माता जीवन प्राण आधार मेरी रास प्रीत लाई घर हृदय निवास माया सिलक काटी गोपाल कर अपना लीनू नदर निहाल सिमर सिमर काट

सर्वसाधारिया गौर निम निमला गोपाए देहो दिखारिया मैं किए मित्र नेक एक बलहारिया सब गुण के सही सब गुण के सही नाए हार पूर पंडारिया चौदह सभिया नाव सूख सवारिया मैं आही ओट तुहार नानक बलहारिया गुर

देखे सिगार मिठ रस भोग भोजन सब चूड़क ना लेखे मैं मत जो बन गर्भ गलीद दाथनी ना आवे नानक सतन मिल मिलाई बिन फिर नींद ना आवे मुंद न मानणिया जी हो बिन धनी प्यारे क्यों सुख पावेगी बिन और तारे ना बिन घर बस नाही पुछो सकी सहेलिया बिन ना प्रीत प्यार नाही बस सच सहेलिया सच मन संजम संतुक मेला गुरमति सौ जानिया नानक नाम ना छुड़ सातान नाम सहज समाणिया मिल सक सहेली डो हम पिर रावे हा गुर पुछ लिखो जियो शब्द स्नेहा शब्द साच गुर दिखाया मनमुखी पछताणिया निकस जत रहे अस्तर जाम सच पछाणिया साच की मत सजा नौ तन शब्द नेहो नवे लो नानक सहज सहच मिल हो सकी सहेली हो मेरी अचपुनी जियो हम कर सजन आया मिल वरनारी मंगल गाया गुण गाए मंगल प्रेम रहसी मंद मन ओ माहो साजन रहंस दुष्ट व्यापे।

हर रस भेद जियो, हर कै सहज सुभाए, मन मोहन मोहे लिया जियो, दुबदा सहज समाए, दुबदा सहज सुभाए, कामण भर पाए, गुरमति रंग लाए, इह शरीर कूड़ कुसत भरिया, गलताई पाप कमाए, गुरु भगत जित सहज तुनि उपज।

आया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई ना है जी जंत सब तेरा खेल विजो

सब होई, दुष्ट छा शबाय सके न कोई। एक बार जंत में संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा, जिन

गंगारो प्रथम तरो भगवत को त्याना बहुर करो कविता बिदनाना किशन जथा मत चरित्र उचारो चूकुए कबले हो सुधारो कबे बाज दोहरा जो निज ब्रह्म सो कहा सो कहे हो जग माहे जो ते प्रभु को त्याय हैं अंत

इतनी सेवा प्रवान कर रही जी, कीर्तन करते आप वापसी वर्ष भाई सफाई गुरु जंट सिंह जी पटियाले वाले आप जी बड़ी बार बाणी कथे राही जुड़नगे उन्होंने पासों प्यार से सरन करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

सतगुरु आप आए, दूसरा उस बोली नूं उस किते नूं महाराज जी ने भाग लाए जिहड़ा सदियां तों बेआबाद पिया सी। जिवें कहिंदे आ ना, माली तो बिना बाग विरान हुंदा, उसे तरह जिहड़ा साडा खिता है वो महाराज जी तो बिना बेआबाद पिया सी, विरान पिया सी। दुनिया दी हर बोली नूं किते ना किते धार्मिक, किते ना किते राजसी मान सन्मान हासिल सी, लेकिन साड़ी बोली पंजाबी बोली गुरमुखी बोली सदियां तो बेआबाद पई सी। महाराज गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह जी ने भाग लाए, आप उस खिते दे विच अवतार धारण करके सरूप धारण करके गुरु नानक दाए उस बोली नूं अपनी रसना तो बोलिया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सात संगत जी माफ करना, असी पंजाब दे लोग जिस जिस खिते च जा रहे हैं उत्थे दी बोली उत्थे दा सभ्याचार सब कुछ अपनाउण च कसर नहीं छड रहे, ते अपनी बोली अपना सभ्याचार जिहड़ा सिख सभ्याचार है, एक पंजाबी सभ्याचार सिख सभ्याचार दे पैरलल खड़ा कीता गया, उहदी गल नहीं मैं कर रहा। जिहड़ा साडा सूरमियां दा जोधियां दा बलियां दा सभ्याचार है उस सभ्याचार की गल कर रहा। सो वो सभ्याचार असी भुलते जा रहे। वैसे अज के लोगों नूं तां सभ्याचार का मतलब ही नहीं पता, लोग समझते नचना गाउणा टप्पणा इहनूं सभ्याचार कहिंदे आ, जदके संस्कृत दे दो वर्ड ने जिन्हां नूं मेल के जोड़ के सभ्याचार शब्द बनिया, सभ्य और आचार, ये दो शब्दां नूं जोड़ के पंजाबी दा सभ्याचार शब्द बनता। सभ्य उहनूं कहिंदे जो सभ्यक होवे, जिहड़ा जे किसे दृष्टि तो उहनूं देखिए देखण विच भी सत्कारयोग होवे, जे सुणीए सुनन दे विच भी अदब योग होवे, ते जे बोलीए बोलन दे विच भी अदब योग होवे। आचार मीन आचरण करैक्टर, उन्नू सभ्याचार कहिंदे आ। ते पंजाब च कई बार देखीदा अज भी सभ्याचार दा मतलब ही बस नाच गाना बना के रख दिता है, जदके उहदा असल जिहड़ा मीनिंग है वो समझ ही है नहीं किसे नूं। ते जिहड़ा सभ्याचार है वो सतगुरु ने सानू दिता है, सिख दा आचार, सिख दी बोली, सिख दा उठना बैठना, दस्तार गुफ्तार रफ्तार जिहड़ी सानू बख्शिश कीती है सतगुरु जी ने, ये साडा सभ्याचार है, सभ्य आचार है, सत्कार योग अदब योग आचरण है साडा। ये सो असी जिस खिते च जा रहे हैं उत्थे जा के उत्थे वाला अपनाई जा रहे हैं, अपना छड़ी जा रहे हैं। देखो जिस बोली नूं जिस पहरावे नूं अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने आप अपनाया होवे, महाराज जी का वचन है कल की तर पिता जी का, श्री गुरु नानक आप परमेश्वर अवतार लियो शुभ वंश प्रधाना,
कि गुरु नानक देव साहिब महाराज आप पार ब्रह्म परमेश्वर स्वरूप ने, ते जिस बोली नू अकाल पुरख वाहिगुरु ने अपनी रसना तो बोल के निवाजिया होवे, जिस पहरावे नू अकाल पुरख वाहिगुरु ने आप साडे वांगू दस स्वरूप धारण करके पहरिया होवे, प्रचारिया होवे, ते असी उन्हूं छड़ दिए कादे लई? सिर्फ समय दे दौर दे वेग दे विच बैण दे लई, होर कुछ भी नहीं है। दौर है समय दा कि माया है, माया दी प्रवृत्ति है। चलो मैं बहुता उस पासे ना जावा, तां बार बार आखीदा साडे तो वड्डे भाग किसे दे नहीं। साडी बोली जिन्हों कदे किसे ने अदब नहीं कीता, कदे नाराज सी माण, ना धार्मिक माण, कोई माण नहीं सी, इन्हों अकाल पुरख वाहिगुरु ने अपनाया, दस स्वरूप धारण करके आप बोलिया और बाणी रची, ऐसी बाणी रची जो अज सारियां बाणियां दे विचों उत्तम बाणी है। सारियां बोलियां दे विचों अगर उत्तम कोई वस्तु है, अदब योग कोई दात है, तो वह गुरबाणी दी है। किते भी चले जाओ, जदों हर धर्म दे बड़े बड़े जड़े निरपक्ष लोग ने, जड़े सच नू ग्रहण करन दी ताकत रखदे आ, बुद्धि रखदे आ, समर्था रखदे आ, उन्हां ने जदों सच्चे पातशाह दी बाणी नू पढ़िया तां नमस्कार कीती। और इत्थे तक बोल लिखे है कि पूरी दुनिया दे अंदर, पूरे विश्व दे अंदर, पूरे विश्व नू अगर कोई शांति दे सकदी है, शरीरक मानसिक और हर एक तरह दी संतुष्टि दे सकदी है, उस सतगुरु की बाणी है। नहीं तो सब पासे किते ना किते द्वैष, किते ना किते कोई ना कोई कमी जरूर है। इस करके असी भागा वाले हाँ, तो समझिए अपने आप नू, सतगुरां दे बचना नू ध्यान च दईए। जदों अपने छोटे छोटे बच्चियां नू पंजाबी छड़ के, देखो इंग्लिश उन्हां नू सिखाई देनी है, इदां दा इत्थे सिस्टम है सब देशां दे अंदर। कम से कम घरां दे विच तां पंजाबी बोलीए। जदों छोटे जे बच्चे नू आवाज़ मारनी है ना, उस वेले एक बार सोच लिया करो कि गुरु नानक देव साहिब दे माता माता तृप्ता जी किवें आवाज़ मारदे होणे अपने लाल नू, किवें उन्हां ने अकाल पुरख वाहिगुरु दी मां होण दा सुभाग हासिल करके उन्हां नू ये बोली दा एक एक लफ्ज सिखाया होना बोलना। बस जदों सतगुरु दा ख्याल रहेगा, फिर अपने आप अपनी बोली, अपनी सभ्यता, अपने सभ्याचार वल मुड़े आऊंगे। रहो जिथे मर्जी, पर अपनी होंद ना भुलो। जड़ियां कौमां अपनी होंद भुल जांदियां ने, एक दिन संसार दे नक्शे तो साफ हो जांदियां ने। आओ महाराज साहब सच्चे पातशाह जी दी धुरकी बाणी दी लड़ी वार व्याख्या चल रही है, चित बिरतियां नू एकागर करिए। महाराज साहब जी की उपदेश बख्शिश करदे ने, श्रवण करदे हां। सारी संगत चित बिरतियां नू एकागर करो, कोई भी रसना वांझी ना रहे, सारी संगत

ज्योति कैसी आरती होए बहुखन्ना तेरी आरती अनता शब्द वाजंत वेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तोहे को सहस मूर्त नना एक तोही सहस पद मिलन एक सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इह चलत मोही सब मह जोत जोत है सोई तिस दे चानन सब मह चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए ज्योतिष पावे सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अंदिनो मोहे आहि प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग कोहे जाते तेरे नाय वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर भव भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडोत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हर साधना जानिया तिन अंतर हम मैं कंडा हे ज्यो ज्यो चला है चुभै दुख पाव है जमकाल सह सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण भव खंडा हे अविनाशी पूर्क पाया परमेश्वर भव सोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम ग्रीम मस्कीन प्रब तेरे हर राख राख वडवड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नाम में ही सुख मंडा हे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करहो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला ईहा खाट चलो हर लाहा आगे बसन सहेला औद घटे दिन सरैना रे मन गुर मिल काज सवारे रहाओ एहो संसार विकार संसे मह तरे हो ब्रह्म ज्ञानी जिस है जगाए पियावे एहो रस अगत कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाजो हर गुरते मन है बसेरा निज कर महल पाओ सुख सहजे महोर न होए गो फेरा अंतर जामी पुरख विधाते

मंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तो वह उस गावन करतार करुणा में दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तराय संग सहाय सो आवे ना ची जो बैराई तास्यो प्रीत बलुआ के ग्रह भीतर बस अंध केल माया रंग रसाय दृढ़ कर

अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावे एक बस्त कारण बिखोट गवावे एक पीना दे दस भी हिरले तो मूढ़ा कहो कह करे जिस ठाकुर से हो ना।

ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी भाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे मैं शरणारंग, ब्रह्म ज्ञानी या परमेश्वर।

ब्रह्म ज्ञानी जन ब्रह्म ज्ञानी कांतरा पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृठका करता ब्रह्म ज्ञानी सत जीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुगत जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुख विधाता

मुक्त स्वरूप कहा वह तैसा हर्क तैसा सोग सदा अनंत नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी सुबाटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो बरताए साई जुगत नानक पुर कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगरे ठाऊं।

कबू भिखारी नीच का साजा, कबू हुआ बकीर्त में आवै, कबू भला भला कहावै, ज्यों प्रभ राखे तिवि राहै, गुरप्रसाद नानक सच गहै, कबू होए पंडित करे बखियान, कबू मोन धारी लावे ध्यान, कबू तट तीर्थ स्नान, कबू से साधगम ज्ञान, कबू कीट हस्त पतंग हो जिया, अनक जोन पर मैं परमिया, नाना रूप जो स्वांगी दिखावै, जो पर भावै तवै न चावै, जो तिस भावै सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए, कबू सा संगत पावै, उस स्थान ते बहुर न आवै, अंतर हुए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मंदन नाम रते गरंग, सदा बसे पार ब्रह्म कै संग, ज्यों जल मैं जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जो समाना।

तरमंताय कर कर बावे त्रिन समान काश संग ना जावे बाउलस कर मानुख पर गरिया सबल भीतर था का हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत खन में हुए जाए बसमंत किसे

उससे पहन कहा किशो हे तान धनंतर एक आसोए अपने चल्स आप करने हार कौत करे रंग आप हार मन में आपन अपने माहे नानक कीमत कह ना जाए सत सत सत ब्रह्म स्वामी गुर प्रसाद किना बखियानी सच सच सत सब कीना कोट मदे किना बिरल जीना भला भला भला तेरा रूप आत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट

जनमथा। बड़भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे। राम नाम जो करे विचार, से तरम अंधगनी संसार। मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी। एको एक एक पछाने, ए तुत कियो सोजी जाने। नाम संग जिसगा मन मान्या, नानक तिने निरंजन जानिया। गुर प्रसाद अपने आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै। सा संग हर जस गैत, सर्व रोग त्योहार जिन रहत। अंदिन कीर्तन केवल वख्यान, ग्रस्त मैं सोई निर्वाण। एक उपर जी जन किया।

दृष्ट आन दृष्ट आज्ञाकारी तारि सब श्रेष्ठ अपे आप सकल में आप अनग जुगतराज थाप अभिनाशी नायक शिखांड तारण तार्य ब्रह्मांड अलाख अपे पुरख प्रताप आप जपायता नानक जाप जिन पर जाता सो शोभावंत सकल संसार दुरायतन बंत प्रभ के सेवक सकल उदारन प्रभ के सेवक धूप विसारन अभे मेल कृपाल गुर का शब जप निहाल उनकी सेवा सोई लागे सुनो कृपा करे बड़भाग नाम जपत पावे बिश्राम नानक तिन पुरख ऊतम करमान योगिश करे सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभाए हो वै सो होए करने हार पछाणे सोहे प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाया दृष्टाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिसते उपजे तस्माय समाय ओए सुख निधान उन्हों बने।

मारे ना राखे अवरण कोय, सर्व जिया का राखा सोए, काये सोच करे रे प्राणी, जब नानक प्रभ लाखे बिडाणी, बारंग बार बार प्रभ जपिया, पी अमृत मन तंत्र पिया, नाम रतन जन गुरमुख पाया, तिस किश अवर नाही दृष्टाया, नाम तन नाम और परंग, नाम सुखर नाम का संग, नाम राजो जंत्र बताने, बंधन नामे नाम समाने, उठत बैठ सोवत नाम, कहो नानक जन कै सतकाम। बोलो जाजे बा दिन रात, प्रपने जन की नीदात, करे भगत आत्म कह जाए, प्रपने स्यों रहे समाए, जो होवा होव सो जाने, प्रपने का हुक्म शान है, तिसकी महिमा कौन बखाना हो, तिसका गुण कह एक ना जानो, आठ भैर प्रभ बसे हजूरे, कहो नानक से जन पूरे, मन मेरे तिन की ओट ले, मंत्र अपना तिन जन जे देहे, जंजन अपना प्रभु पिछाता, सोजन सर्व तो का दाता, जिसकी शरण सर्व सुख पावा है, जिसके दर्शन पाव मिटा।

जागे हृदय बसे प्रभु, जागे हृदय बसे हर सोए, कल ताती ठंडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, भवन से पूर्ण हुए आस, भगत पाए आत्म प्रगास, तितकर बजाए बसे अविनाशी, कहो नान काटी जम फांसी, तद विचार कहे जन साचा, जन्म मरै सो काचो काचा,

संदना के हृदय सब धर्म संदना सुने सो भजन सर्वव्यापी राम संग रचन जिन जाता तुसकी रहत साध भजन साधु सब गहत जो जो होए सोई सुख मान है करन ग्राम नहार प्रभ जान है अंतर बसे बाहर भी ओही नानक दर्शन से देख समोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पात तिस भावता करे विस्तार तिस भावता एक अंकार अन कला लखी न जाए जिस भाव सिलाए मिलाए कम निकट कम न कहिया दूर आपे आप आ भरपूर अंतर्गत साब जनाए नानत जनाब बुझाए सर्वभूता बरतारा सर्व नयन आपे खणहारा सगल समग्री जाका तना आपन जस आप ही सुना आवन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी किन्नी माया

सदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम सलोक साध के भजन अमलीक लाल ए रतन सुनद कमावत होत उदार आप तरह लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जागे मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहत बाजय सुन सुन अंध करे प्रभु गाजय।

दुख पर हर सुख कर लै जाय। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहे आसमाई। गुर ईसर गुर गोरख बरमा गुर पार्वती माई। जे हों जाना आखा नाही कहना कथन ना जाय। गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाय। तीर्थ नहावा जे तस पावा विण पाने के नाए करी। जे ते सिरठ उपाई वेखा विण करमा के मिलै लई। मत विच रतन जवाहर मानक जे एक गुर की सिख सुनी। गुरा एक देह बजाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाय। तीर्थ नावा जे तिस पावा विण पाने के नाय करी। जे ती सिरठ उपाई वेखा विण करमा के मिलै लई। मत विच रतन जवाहर मानक जे एक गुर की सिख सुनी।

कोए चंगा ना और खाए कै जस कीरत जागले जे तस नजर ना वई ता वात ना पुछै के

जाने मन कोए, मन सुरत होवे मन बुद्ध, मन सगल भवन की सुध, मन मोह चोटा ना खाए, मन जम के साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन मार्ग ठाग न पाए, मन पास्यों परगट जाए। मन माग न चाले पंथ, मन धर्म से ती संबंध,

निरंकार असंख्य जाप असंख्य पाव असंख्य पूजा असंख्य तपताव असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख्य जोग मन रह उदास असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार असंख्य सती असंख्य दातार असंख्य सूर मोह पक्ष सार असंख्य मौन लेवल लाए तारू

असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गाल वड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक सिर करे पार असंख निंदक सिर करे पार नानक नीच कह विचार वार न जावा एक बार जो तुद भाव साई भली कार तू सदा सलामत निंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह।

आपे जाने सोई किव करे आखां केव सालाही क्यों वरनी किव जाना नानक आखण सबक आखे एक दू एक सियाणा

सोई। देखो आखे भोल बिगाड़ ता लिखी है सिर गावारा गावार सो धर के हा सो करके हा जित बह सर्व संभाले।

है, अपेख है, अनाम है, अकाम है, अतेय है, अपेय है, अजीत है, अपीत है, त्रिमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है।

हित है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, प्रजंग प्रयाशंद नमो सर्वमाने समस्ति निदाने, नमो देव देवे पेखिय पेवे, नमो काल काले, नमो सर्व काले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पहुणे, अनंगी अनाते निरसंगी प्रमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, नमो

भोगहर्ता परम परम परमेश्वर प्रोजपाल सदा सर्वदा सिद्धदाता दयाल अशेदीय पिहदीय नामं कामं सुभासतो पराजी सुभासतस्तामं तेरा जोर चाचरी शांत जले है थले है पीत है अपेह है प्रभु है जू है देश है अपेस है

गादे शुभं सर्पागे सु सर्वानुरागे त्रिपुगत स्वरूप है छेद है सूत है के नरकं प्रनास है पृथ्वी और प्रवास है निरुक्त प्रवाह है दैव सदा है विभुक्त स्वरूप है परजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रवाह है

पौड़ी सेव की तीस दो की जिन सचो सच तिहाया ओनी मंदे पैर न रखे उनकर सुकृत धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित्य।

0: पंडित हिकमत हुजत संजय करे प्यार।
1: धर्मी धर्म करे गावे मंगे मुख द्वार, जदी सदावे दूत ना जाने छड़ बहे करबार। सबको पूरा आपे होवे कठ न कोई आखे, पत परवाना पीछे पाइए ता नानक तो ले जा भी महला पहला।
2: वदी सुभाष के नाम का।

0: नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क ठाणी अमल किया चारे वेदों से चार पड़े गुरदिन गुणे तिन चार विचार पाओ भगत करनी सदाए तौ नानक मुखंतर पाए पौड़ सतगुर बठवारिया
1: जित मिले कसम संभाल लिया जिन कर उद्देश ज्ञान अंजन दिया इन नेत्री जगत निहालिया कसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोई था विचारिया।

0: मन जुठे तुही पर हे कहो नानक सच आइए सुच होवे ता सच पाइए पड़ चित्ते अंदर सबको
1: देख नदरी हेट चलाएदा आपे दे वड्याईयां आपे ही कर्म कराएदा वडो वडा वड बेदनी सिर सिर धंधे लाएदा नदर बठ जेकर सुल्ताना काऊ कराएदा धर्म

सुच बैठाए सुच अगे रखिए कोई न पटियो जाए सुचा हो जे बिया लगा पण सलो सटी पोती जाई सत्या किसे लगा दो।

आपे पांडे साजिन आपे पूर्ण दे एक नी दुसमाई है एक चूल्हे रैन चढ़े एक नहाली पैसवन एक ऊपर।

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु खालसा सासंग जीओ महाराज साहब जी दी अपार बख्शिश बरत रही है। अमृत वेले तो ही वाहिगुरु दे रंग चरंगियां रूहां महाराज साहब जी दी चरण सरण च हाजरियां भर के लाह लै रही ने। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अज अमृत वेले जो कृपा दृष्टि हुई है श्री मुख वाक साहिब जी दे रूप दे विच, आओ व्याख्या दा समा है। श्रवण करदे हां महाराज साहिब जी दे बचना नूं बोलां नूं।

ज्ञान करवाया है कि साड़ी जिंदगी दी असलियत की है। बंदा सारी जिंदगी पता नहीं की सोचता रहता है, लेकिन असलियत उदी विचारधारा तो उल्ट होंदी है। असलियत तो यह है भी पता नहीं किन्ने क सुआस मिले ने, किन्ने क जोने ने, कदों सुआसां दा तेल इस शरीर रूप दीवे चों मुक जाना है, ते ओ घर बार सब कुछ जो बंदा इत्थे सैट होण लई बणाउंदा है उहनूं अगे लई। ये असलियत है साड़ी जिंदगी दी।

असल रब दे प्यारे है उन्हां दी तां महाराज जी दे हर अंग च उपमा है। जिहड़े कोई भेखी ने 1-2% उन्हां दा सानूं ज्ञान रहे, उन्हां दे जाल च ना फसीए, उन्ना क उन्हां बारे सानूं सतगुरां ने सुचेत किया है। सो लेकिन जदों सतगुरु साहिब जी दे किसी उपदेश नूं इक पास्यों देखीदा है

जोर सकत नानक कछ नाही। परव राखो सरन परे टोली महला पंजमा, हर के चरण कमल मतिहाव, काल कुठार पेत बात हंता,

चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे नानक आनंद करे हर जप जप सगले रोग निवारे तोड़ी महला पंजमा करती जा चौपदे एक।

नाम संगीसो मन ना वसारियो, नाम संगीसो मन ना वसायो, छोड़ो जाए बाहु चित लायो, सो संचो जत भूख दिसायो, अमृत नाम तो सा नहीं पायो, काम करो

दर्शन कारण बीती बीती पेखा गुरमिल परम गवाया हे। ए बुद्ध भाई मैं साधु कन्न लेख

कनो कनो कनो सद लोड़े बिन लैने कैठे पायो रे। महाराज को गात बाहो सो लुबड़ो नि पागड़ो पायो संजोयो रे। सुन मन सीख साधु जन सगलो थारे सगले प्राचत मिट्यो रे। जाको लहनो महाराज जी गठड़ो जन नान गरवास न पौड़ो रे। ठोडी महला पंजमा कर पंजमा दुप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद है सो गुण मेरो प्रभु जी की ना।

गुरको सौद मिर हीरे दीना रूप अनुप मेर कछु न विचार्यो प्रेम गहो मोय हर रंग पीना पेख्यो लाल न पाट बीच खोए

राम नाम निर्मल हरि तराव प्राण आधार जीवन तन मोर देखन को दर्शन प्रवनीत वात कार तु सत्संग मोरे मन अपने को मैं हर संग कीत संत प्रसाद पे मन निर्मल करके

पूर्ण पार ब्रह्म सुख दाते अवनाशी विमल जाको जास। संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा पेटे गुण तहास। सांत सहज सुख माने उपज कोट सूरज नानक बरगास। टोडी महला पंजमन हर हर पा हर हर पतत पावन जी प्राण मान सुख दाता अंतर जमी मन को पावन। रा सुंदर सुवर चतर सब वेता दिसदारित दास निवास भगत गुण गावन। निर्मल रूप अनूप स्वामी करम भूम बेजन सौखावन। विस्मन विस्म भय विस्मदा आन भी।

माया छाला तिनके अगन मेह की छाया, गोविंद भजन बिन हर कह जल रहा, छोड़ सियान बचत राई दुख।

चरण गुर मीठे बड़े भाग देवे परमेश्वर कोट भला दर्शन गुर लीठे रहा गुण गावत अचत अवनाशी काम क्रोध बिन से मद टीठे आतर पै साज रंग राते जन मन बहर नहीं पीठे बिन हर भजन रंग रस जेते

पंचमं सासंग हर हर नाम चेतारं सहजानंद वेद नरंति रति अंकुर भलो हमारा राव गुरपुरा पेट्यो बड़ भागी ताको अंत न पारावारा कर गए काट लियो जन अपना विकसा कर संसारा जन्म मरण काटे गुरवचनी बोर न संकट द्वारा नानक शरण गही स्वामी की पुने पुने नमस्कारा तोड़ी महल्ला पंजमन माई मेरे मन को सुख कोट नंद राज सुख भोगवे हर सिमरत बिन से सब दुख रह कोट जन्म के किल विखनासी सिमरत पावन तन मन सुख देख सुर

नानक शरण गहे सुख सागर जानम मन फिर गर्व न चोख टोडे महला पंजमन हर हर चरण देह उरथारे सिमर स्वामी सतगुरे अपना काज सफल हमारे राह पुन दान पूजा परमेश्वर हर किर तत विचारे गुण गावत अतुल सुख पाया था करे अगमे अपारे योजन पार

पद गुरमत हर राम राम रहाओ। नाना ख्यान पुराण जस उत्तम खर दर्शन गावे राम। संकल करोड़ तेती तेत आयो नहीं जा रो हर मर महाम। सुर नर गण गंधर्व जस गाय सब गाव जा गावत जेत उपाम। नाने कृपा करी हर जन को ते संत भले हर राम। बैराड़ी महला चौथा मन मिले संत जना जस गायो। हर रतन रतन हर निको गुर सतगुर दान देवायो रहाओ। ते जन को मान तन सब देवो जिन हर हर नाम सुनायो। तन माया संपै तिस देव जिन हर मीत मिलायो। खिन किंच कृपा करी जग जगदीश्वर तब हर हर हर जस त्यायो। जन नानक हर पेट स्वामी दुखो में रोग गवायो। वैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे। जे को निंद करे हर जन की अपना गुण गवावे रहाओ। जो कुछ करे सो आपे स्वामी हरे आपे कार कमावे। हरे आपे ही मत देवे स्वामी हरे आपे भोल बोलावे। हरे आपे पांच तत्व विस्थारा बेटा तू पंच आप बावे। जन नानक सतगुर मिले आपे हरे आपे चगर चुकावे। वैराड़ी महला चौथा जप मन राम नाम निस्तारा। कोटक तंत्रे पाप सब खोवे हर पौ जल पार उतारो रहाओ। कया नगर वत हर स्वामी हर निर्भव निर्भय निरंकारा। हर निकट वस्त कश नदर न आवे हर लादा गुर विचारा। हरे आपे सास राफ रतन हीरा हर आप किया पासारा। नानक जिस कृपा करे सो हर नाम वेसा है सो सा सच्चा वनजारा। वैराड़ी महला चौथा जब मन हर निरंजन निरंकारा। सदा हर त्याये सुखदाता ताका आंत न पार हारा रहा। अगन कुंड में उदले लागा हर राखे उदर मंझारा। सुवे सहर सेवो मेरे मन हर अंत छावन हारा। जा के हृदय वसया मेरा हर हर ते जन को करो नमस्कारा। हर कृपा दे पाइये हर जप नानक नाम आधारा। वैराड़ी महला चौथा जप मन हर हर नाम नित तिहाए। जो इच्छे सोई फल पावे फिर दुख न लागे आए रहो। सो जप सो तप सा व्रत पूजा जित हर सो प्रीत लगाए। बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी एखिन में बिन बिसर सब जाए। तू बेअंत सर्व कल पूरा कुछ कीमत कही न जाए। नानक सन तुहारी हर जो पावे तिवे छड़ाए। राग वैराड़ी महला पंजमा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। संत जना मिल हर जस गायो कोट जन्म के दुख गवायो रहो। जो चाहत सोई मन पायो कर कृपा हर नाम देवायो। सर्व सुख हर नाम बढ़ाई गुर प्रसाद नानक मत पाई। राग तलंग महला पहला कर पहला एक ओंकार हो सतनाम। करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुर प्रसाद। जक अर्ज गुप्तम पेश तू दरगोस कुन करता हर हक्का कवि करीम। तू बै पर्वत गार दुनिया मकामे फानी तकीक दिल दानी। मम सर मुए अजरा गृफते दिल ही जनादानी। रहा
ਜਨ ਪਿਸਲ ਭਦਰ ਬਿਰਾਦਰ ਰਾਕਸ ਦੇਸ਼ ਦਸ ਤੰਗੀਰ ਆਖਰ ਵਿਆਹ ਫਿਰ ਕਸ ਨਾ ਤਾਰਦ ਤੂੰ ਸਭ ਤਦਵੀਰ ਸਭ ਰੋਜ਼ ਦਰ ਸਭ ਰੋਜ਼ ਗਰਦਮ ਦਾ ਦਰਹਵਾ ਕਰਦਮ ਬਲੀ ਖਿਆਲ ਕਾਹੇ ਨਾ ਨੇਕੀ ਕਾਰ ਕਰਦਮ ਮਮ ਏ ਚਿਰੀ ਅਹਿਵਾਲ ਬਦ ਭਗਤ ਚੋ ਵਕੀਲ ਬਗਾ ਫਲ ਵੇ ਨਜ਼ਰ ਵੇ ਵਾਹ ਬੇਵਾਕ ਨਾਨਕ ਭਗੋ ਜਨ ਜੰਤਰਾ ਤੇਰੇ ਚੱਕਰਾ ਪਾ ਕਾਗਤ ਲੰਘ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਾਉ ਤੇਰਾ ਪਾ ਖਲੜੀ ਮੇਰਾ ਚੇਤ ਮੈਂ ਦੇਵਾਨਾ ਪਾਇਆ ਚੇਤ ਕਰ ਕਾਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਭੂਖ ਮੈਂ ਦਰਮਾ ਗੋ ਨੀਤਾ ਨੀਤ ਤੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੋ ਸਮਾਏ ਮੈਂ ਦਰ ਮੰਗਤ ਭੀਖਿਆ ਪਾਏ ਰਾਓ ਕੇਸਰ ਕੁਸੁਮ ਮਿਰਗ ਮੈਂ ਹਰਨਾ ਸਰਵ ਸਰੀਰੀ ਚੜਨਾ ਚੰਦਨ ਭਗਤ ਜੋਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰਵੇ ਪਰਮਲ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਪਟ ਭਾਂਡਾ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ ਐਸਾ ਭਗਤ ਵਰਣ ਮੈਂ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਵੇ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਦਰ ਵੇਖਿਆ ਪਾਏ ਤਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਏ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਪਿਆਰੇ ਲੀਤਲ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ ਮੇਰੇ ਕੰਤ ਨਾ ਪਾਵੇ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ ਕਿਉ ਤਨ ਜੇ ਸੇ ਜੇ ਜਾਏ ਹੋ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਹੋ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ ਹੋ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ ਤਿੰਨਾ ਕੇ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾ ਹੋ

प्रसाद। अंतर वसन बाहर जाए अमृत छोड़ काहे बिखाए, ऐसा ज्ञान जप मन मेरे हो चाकर साचे केरे राव। ज्ञान तन साब कोई रवे बांधन बांधया, साब जग पावे सेवा कर चाकर हो, ए जल थल महियल रविया रब रहया सोए। हमने चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणत नानक तारे सोए। सोही महला पहला घर सेवा एको अंकार सतगुर प्रसाद। उजल कह चिलकणा कोट मुकालड़ी मस, धोते झूठ न उतरे जे सो तुहां तिस। सज्जन से नाल मैं चलदया नाल चलन, जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसन रहाओ। कोठ मंड माड़िया पासो चित विया, टटिया कम नाया बनी विच सखणिया। बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मन वसन, कोट कोट जिया कावने बग्गे न कहियन। सिमलर शरीर में मैजल देख पुलहन, से फल कम नाया बनी ते गुण मैं तन हन। अंदरे पारे उठाया डुगर बाट बहुत अकी लोड़ी नलह हो चाड़ लंगा केत। चाकरियां चंगिया आईया अवर सियाण बकेत, नानक नाम संभाल तू बद्दा छुट्टे जित। सुई महला पहला जब दबगा बंद बेड़ला, एहो लंगे वहेला। ना सरवर ना उछले ऐसा पंथ सुहेला, तेरा एको नाम जीठड़ा रत्ता मेरा चूला। सदरंग ढोला रहाओ

तेरी शरण पूर्ण दयाला, तुझ बिन काम करे प्रतपाला। रहाओ जल थल महियल रहया भरपूर, निकट उस नाहीं प्राप दूर। लोकपति

जन नानको गुरु कृपा तारी प्रभात देह निस्तारे सोई महला पंजवा घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सेवा थोरी मांगन बहुता महल न पावे कह तो पहुता जो ब्रह्मा ने तिन की रीसा कूड़े मूर्ख की हाठी सा रहाओ पेगद गावे सच न कमावे कह तो महल निकट न आवे अतीत सदाए माया का माता मन न प्रीत कह मुख रहता को नानक प्राभ बिनु सुनी जय कुचल कठोर कामी मुक्त की जय दर्शन देख की वड्याई तुम सुखदाते पुरुख सुभाई रहाओ रहाओ दूजा सोई माला पंजवा बुरे काम को उठ खलोया नाम की बेला पै नाम की बेला पै पै सोया अवसर अपना बुझे अवसर अपना बुझे ना या ना माया मोह रंग लिपटाना रहाओ लोभ लहर को बेकस फूल बैठा साजना का दर्शन डीठा कमन समझे अज्ञान गवारा बहर बहर लपटो जंजारा रहाओ बिघनाद कर सुन पीना हर जस सुनत आलस मन कीना दृष्णा हिरे पेखत अंधे छोड़ जाहे झूठे सब धंधे रहाओ को नानक प्राभ बख्श करी जय कर कृपा मोह साध संग दी जय तो कुछ पाइये जो हुए रहे न जिस जाए तिस नाम लेना रहाओ सुई माला पंजवा कर मैं ठाकुर ना धरना आवै कल में पान ले लटकावे पर मैं भूला सागत फिरता निर्भुले खप खप मरता रहाओ जिस पान को ठाकुर कहता ओ पान ले उसको डुबता गुनहगार लूण हरामी पान नाव न पार ग्रावी गुरमिल नानक ठाकुर जाता जल थल मैयल पूर्ण विधाता सुई माला पंजवा लाल नरा कवन गतिरे सग बताव मुझ मतेरी सूह बसूह बसूह भी

जब तो संजम देहो जत तेरी, एक निमक मिलाव हो मैं प्राण पतेरी, मान तान अंगबद हतीरी, सा नानक सुहाग बतीरी, सोई महला पंजवा। तू जीवन तू प्राण आधारा, तुझी फेक फेक मान।

सारे सकल समग्री सूत तुम्हारे। तू प्रीतम तुम प्राण दारे तुम ही पेक पेक मन बिग सारे रहाओ अनक जोन प्राम प्राम प्राम हारे ओट गही अब साध संगारे अगम गोचर लख पारे नानक सिमर दिन रह नारे सुही महला पंजवा। कमन काज माया बड़ियाई जाग बिन सतबार नकाई इस सपना सोबत नहीं जाने चेत व्यवस्था में लपटा न रहाओ महा मोहे मोहे उगवारा पेकत पेकत ऊड़ सिधारा ऊचे ते ऊचे ता कदर बारा कई जंत बिना ही उपारा दूसरो वा ना को होई जप नानक प्रभे को सोई सुई महला पंजवा। सिमर सिमर ता कहो जीवा चरण कमल तेर तोय तो पीवा सोहर मेरा अंतर जामी भगत जना कै संग स्वामी राओ सुन सुन अमृत नाम त्यावा आठ पैर तेरे गुण गावा पेक पेक लीला मन आनंदा गुण पार पर परमानंदा जाके सिमरन कछ पाओ ना प्यापे सदस नानक हर जापे सुई माला पंजवा। गुरते बचन हृदय त्यान तारी गुर के बचन हृदय ध्यान तारी रसना जाप जप बनवारी सबल मूर्त दर्शन बलहारी।

जय जगदीश के गात नहीं जाने सन सम्राट गोचर स्वामी उधर नानक प्रभु अंतर जामी सुई महला पंजवा सत्संग तरे भय सागर हर नाम सिमर रतनागर सिमर सिमर जीवा नारायण दुख रोग सोग सब मिनसे गुरपुरे मिल पाप तजाय निरहाओ जीवन पद हर का नाओ मान तन निर्मल साच सुभाव आठ पैर पार ब्रह्म त्याई है पूर्व लिखित हुए तप आई है शरण पे जब दीन दयाल नानक जाच संतर बाला सुई बाला पंजवा कर का काज न जानी रूड़ा झूठे धंधे रचो मूड़ा जे तू लाभ है ते तित लग ना जा तू दे तेरा नाम जपना रहाओ हर गदास हर से तीरा ते राम रसायन रंधन माते बाप अगर प्रभ आपे काढ़े जन्म जन्म के टूटे गाढ़े उधर स्वामी प्रभ कृपा तारे नानक दास हर शरण द्वारे सुई माला पंजवा संत प्रसाद निचल कर पाया सर्व सुख फिर नहीं डुलाया गुरु त्याय हर चरण मन चीने ताते करते अस्तर कीने रहाओ गुण गावत जुत बनासी ताते काटी जमगी फांसी कर कृपाली ने लड़े लाए सदा अनद नानक गुण गाए सोई माला पंजवा अमृत बचन सादगी बाहणी जो जो जप तस्की गत हो वै हर नाम रित रतन बखानी रहाओ कली गाल के मिटे कलेसा एको नाम मन में प्रवेशा साधु धूर मुख मस्तक लाए नानक उदरे हर गुर सरणाई सुई महला पंजवा कर तीजा गोबिंदा गुण गाव दयाला दर्शन दे हो पूर्ण कृपाला रहाव कर कृपा तुम ही प्रतपाला जो पिंड सब तुमरा माला अमृत नाम चल है जप

आधार करण करण सम्राट से पार रहाओ। सब रोग मिटावे नवन रोहो वाह नानक रखाया पे हो वाह सुही माला पंजवा। दर्शन को लुचे सब कोई पूरे भाग प्राप्त हो ही रहाओ। श्याम सुंदर ताज नींद क्यों आई महामोहनी दूता लाई। प्रेम सोहा करत कसाई निर्दय जंत तिस दया न पाई। अनक जन्म बीतियन परमाई घर वास न देवे दुतर माई। दिन रहने अपना किया पाई किस दोष न दीजे किरत पाई। सुन साजन संत जन पाई चरण कम चरण सरण नानक गत पाई। राग सोही महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भली सुहावी छपरी जा मैं गुण गाए कित ही कामना तौल हर जित हर बिसराए रहाओ। आनंद गरीबी सत्संग जित प्रभ चित आए। जल जाओ इहो बड़पन माया लपटाए। पिसन पीस ओढ़ कामरी सुख मन संतोखाए। ऐसो काज न किते काज ऐसो राज न किते काज जित नह तृप्ताए। नंगन फिरत रंग एक के ओ शोभा पाए। पाठ पटम्बर बिरथया जे रच लो भाए। सब किस तुमरे हाथ प्राप आप करे कराए। सा सा समृत रहा नानक दान पाए सुही महला पंजवा। हर का संत प्राण तान तिसका अपने हाथ।

मूर्ख लावो मिष्ट बचन बेनती करो दीन की न्याय तज महान सरणी परो हर गुण निध पाई अवलोकन पुनः पुनः करो जन का दरसार अमृत बचन मन में सिंचो बंदो बार बार चित्व मन ऐसा करो जन का संग जन का संग मांगो नानक को प्राप्त आकार दा चरणी लागो सोई महला पंजवा जन्मो ही ब्रह्मांड खंड ताहू मैं पाओ राख लो

रहाओ तुम दयाल कृपाल कृपा निध मनसा पूर्ण हारा भगत तेरे साब प्राण पद प्रीतम तू भगतन का प्यारा तू अथा अपार तू उचा कोई अमर तेरी पते हरदास मारी स्वामी विसरना सुख दाते दिन रहन सास सास गुण गावा जे स्वामी तुद पावा नाम तेरा सुख नानक मांग साहब तुठे पावा सोही महला पंजवा विसर नाही जे तू कबू हूं सो थान तेरा कहा आठ पहर जित तुद त्याई निर्मल होवे देहा मेरे राम हो सो थान पालन आया खोजत खोज भया सात संग तिन सरनाई पाया रहाओ वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे हारे एक तुलने कीमत पाई साधक सिद्ध फिरे बहल लाते ते भी मोहे माई दस अवतार राज हो वरते महंद अवधूता तिन भी अंत न पायो तेरा लाए थके भगभूता सहज सुख आनंद नाम रस हर संति मंगल गाया सबल दर्शन भेटो गुरु नानक ता मन तन हर हर त्याया सुई महला पंजवा करम तन पाखंड जो दिस तिन जम जागाती लूट निर्वाण कीर्तन गाव करते का निमक सिमरत जित छूट संतो सागर पारे उतरिए जो को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिए रहा हो कोड़ तीर्थ मजने छनाना इस काल में मैल परी जय साध सांग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर ली जय बेदक देव सिमृत सब सास्तो इन पढ़िया मुक्त न हो एक अखर जो गुरमुख जापे तिसके निर्मल सोई खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौरना को साझा गुरमुख नाम जपै उधर सो कल मह घट घट नानक मांझा सोई महला पंजवा जो कुछ करे सोई प्रभ मान ओए राम नाम रंग राते तिनकी शोभा सबने थाई जिन प्रभ के चरण पराते मेरे राम हर संता जे वड़ना कोई भक्ता बने आई प्रभ अपने सो जल थल महियल सोई राव कोट अपराधी संत संग उदर जम तक नेड़ ना आवै जन्म जन्म का बिछड़िया होवै तिन हर सुन मिलावै माया मोह परम पोकट संत सरण जो आवै जेहा मनोरथ कर राधे सो संतन ते पावै जन की महिमा केतक बरनो जो प्रभु अपने भाणे कहु नानक जैन सतगुर भेटिया से सब ते भये निकाणे सोई महला पंजवा महागन ते तुद हाथ दे रखे पै तेरी सरनाई तेरा मान तान रे दे अंतर होर दूजी आस चुकाई मेरे राम राय तुद चित आया उभरे तेरी टेक प्रभासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उधरे रहाओ अंध गुप्त काढ़ हलिए तुम पै कृपाला सार संभाल सर्व सुख दिए आप करे प्रतपाला अपनी नजर करे परमेश्वर बंधन काट छुड़ाए अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए भरम गाया भय मोह बिनासे मिटिया सगल विसूरा नानक दया करी सुखदाते भेटिया सतगुर पूरा सुई महला पंजवा जब कस ना सियो तब क्या करता कम न कर्म कर आया अपना खेल आप कर देख ठाकुर रचन रचाया मेरे राम राय तो इते कछु न होई आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई रहाओ गणते गण छूट कतहूँ काची देह आणी कृपा करो प्राप करण हार तेरी बख्श निराली जी जंद सब तेरे की ते कड़ कड़ तू ही त्याई है तेरी कदम तू है जान कुदरत की मन पाई है निर्गुण मुगद अजान गया नी करम धर्म नहीं जाना दया करो नान गुण गावै मिठा लगा तेरा भाणा सुही महला पंजवा भागठने हर संत तुम्हारे जिन घर धन हर नामा प्रवान गणी सही एह आए सफल तिना कै कामा मेरे राम हर जन के हों बल जाई केसा का कर चवर टुलावा चरण धूड़ मुख लाई राव जन्म मरण दोहू मैं नाही जन पर पुकार खुलाई राव जन्म मरण दोहू मैं नाही जन पर पुकारी आए जी दान दे भगती लाए।

पंजवा श्लोक एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आद गुर ए नमः जोगाद गुर ए नमः सतगुर ए नमः श्री गुरुदेव ए नमः अस्पदी

तत् बुद्ध प्रभु के सुन जपत पूजा प्रभु के सुन बिनसै दूजा प्रभु के सुन तीर्थ सुनाने प्रभु के सुन दरगाह मानी प्रभु के सुन हो सुफला प्रभु के सुन सुफल फला से सुमरा जनाब सुमराय नानक ताका लागो पाए प्रभु का सुन सबते ऊंचा प्रभु के सुन उदरे मुचा प्रभु के सुन त्रिसना बुझ प्रभु के सुन सब के सुजय प्रभु के सुन नाय जमतरा स्वा प्रभु के सुन पूर्ण आशा प्रभु के सुन मन की मल जाए अमरा अमृत नाम रिद माह समाये प्रभु जी बसा साध के रसना नान जनका दासन दसना प्रभु को सिमर से तनवंत प्रभु को सिमर से पतवंत प्रभु को सिमर से जन परवान प्रभु को सिमर से प्रभ प्रधान प्रभु को सिमर से भमताजे प्रभु को सिमर से सर्व के राजे प्रभु को सिमर से सुखवासी प्रभु को सिमर सदा विनाशी सिमरन ते लागे जन आप दयाला नानी जन की मंगेर वाला प्रभु को सिमर से परोपकारी प्रभु को सिमर तन सद बलिहारी प्रभु को सिमर से मुख सुहावै प्रभु को सिमर तन सुख बहावै प्रभु को सिमर तन आत्म जीता प्रभु को सिमर तन धर्मलरिता प्रभु को सिमर तन अनंत कनेरे प्रभु को सिमर बसे हरनेरे संत कृपा ते अंदन जाग नाने सुनन पूरे पाग प्रभु के सुनन कार्य पूरे प्रभु के स्मरण कबहु न चूरे प्रभु के सुनन हर गुण बानी प्रभु के सुनन सहज समानी प्रभु के सुनन नेचुले आसन प्रभु के सुनन कमल बिगासन प्रभु के सुनन अनहद चुनकार सुपर सुनन कांतना पार सिमर

सरस्वती जय मातृता सुमेतना पाई मनोहर नाम तेरा संग सहाई जय महाप्यान दो जम दला जय केवल नाम संग तेरा जलाय जय मुस्कुल होवे अत भारी हर को नाम के नमाय उदारी अनुपुनचन करत नहीं तराय हर को नाम कोड़पा पर हराय गुरमुख नाम जप मर मेरे नानक पाव सुख नेरे सुगल सिज को राजा दुखियार का नाम जप तो सुखिया लाख करोड़ी बंधन पर हर का नाम जब चने सरयन कुमार रंग तेख न बुझावे हर का नाम जब त्यागावे जय मार्ग जाते अकेला तय हर नाम संग होत सोहेला ऐसा नाम सुधाते आई है नानक गुरुम परम गत पाई है छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जब तय पार पर आई निभगन जाय आय संगार है हर का नाम तत्काल उदार है अनेक जोन जन में मर जाम नाम जोत पाम विश्राम हो मेला मल कब न तो वेर का नाम कोड़ पाप खोवाए

मन तन रंग रत रंग कै नानक जनक व्रत बाबे कै हर का नाम जनको मुगत जोगत हर कै नाम जनको त्रिवत भुगत।

हर हर जन के माल खजीना, हर तन जन को आप्रव दीना, हर हर जन के ओर सजाने, हर प्रताप जने वरना जाने, बहुत भोजन हर सराते, सुन समाद नाम रसमाते, आठ पैर जन हर हर जपैर का पग प्रगट नहीं छपाए, हर के भगत।

सकल पुरुष में पर प्रधान सा संज्ञा कामटे अभिमान आपद को जो जाने नीचा सो गणीय सब ते ऊंचा जा का मनो सकल के लिए न हर नाम तिन कर चिन्ह।

सकल क्रिया में उत्तम करया स्वा संग दुर्मत मलहरिया सकल उद्यम उद्यम पला हर का नाम जपो जी सदा सकल।

समाचाय ज्योतिर्ना सुवस्त्र कर्मा न जो हवन सो दूर पर न छोड़ जाए तिसका श्रम कराय संग सहाय तिस पर हराय चंदन ले पोतारे तो करतब प्रीतव संग अंध को मत विकराल नान काल लो प्रभु दयाल करतूत पशु की मान जा लोग बेचारा करे दिन रात बाहर पे खंतर मल माया छप सुनाय कज करे छुपाया बार ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापे लोभ सुवान

ओढ़ बहावै। कहाँ बुझारत बुझेड़ो रण कहिए तो समझे पौरा कहाँ बिसमत गावै गुम जतन करे तो पे सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नय ओ तुआ सगवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करे नानी तुमरी कृपा तराय संग सहाय सुहावे न चेत जो बैराय तुप्रीत बलुआ के ग्रह भीतर बस

खाना जे बरसात रो रहता तरा मा मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्मा प्रभु जी जब दुर्गा मन पावे नाना पसती कर जावे जे प्रसाद रो कंचन दे ले विला तुसराम सने जे प्रसाद रो ला रात मन सुख पावे हर दस कहत जे प्रसाद रे सगल छिद्र ठाके मन सरने पर ठाकर ब्रह ठाके

अमृत सुमृत क्यों आलस की जय। जय प्रसाद सवारी मंत्र को कब न बिसारी, जय प्रसाद बाग मन कितना राग प्रो प्रभु अपने मन जिन तेरी मन बंत बनाई, उठ बैठ सत्य सत्य आई त्याय जो एक लख है यहाँ वहाँ नानक तेरी रखाए।

शाश्वती साधक संगमुखोज्जल होत सा समर्थ लेखोत साग संगठयाभिमान साग संग प्रकट सो ज्ञान साग संग जय प्रभ नैरा सा संग सबोतन मेरा साग संग पाय नाम रतन साग संग एक ऊपर जतन साग मामा बरना कौन पराने नाने साग सोपा ब्रह्मा सुमाने साग संग गोचर मिलाय स्वाग संग सदा पर फुलाय साग संगा वह बसपंचा सा संग मृत रसपंचा सा संग वह सब के रैन साग संग मनोहर बहन साग संग न कंतुता वह सा संगा सुमन पा वह साग संग माया ते बहन सा सुनाने प्रभ सो प्रसन्न सा संग दुश्मन समेत साधु के संग महापनेत सा संग से नहीं बैर साग संग न बीगा पैर साग संग नायक मंदा सा संग जाने परमानंदा साग संग ना ही होता आप साग संग तदे सब आप जाने सा बढ़ाई नान सा प्रभु बने आये साग संग गोच साग संग न कब होता वे साग संग सदा सु पावे सा संग वस्त गोचर लय साधु के संग दर्शाय साग संग बसे थानुचे साधु के संग महल पहुंचाए

साधु के संग सोतन पावे जसतंत सौख और सावे स्वास संग धर्म राय कर सेवा सा के संग सोब सरदेवा साधु के संग पाप लाय स्वास संग अमृत गुण गायन साग संग सर्वथान गाम नानक साग संग सफल जनम साग संग नहीं खजकाल दर्शन पेट होत नेहाल साग संग लोकत हर साग संग नरक पर हर साग संग इहा उहा सोहेला सा संग बिछर तर मेला जो छह सोई फल पावे साग संग नृथा जावे पार ब्रह्म साधु बस नानक द्र साधु सुन रसाय साग संग सुनवर नाव सा संग के गुण गाव साग संग नाम विसर सा संग सर्व पर निश्र साग संग लगे प्रमिठा साधु साधु के संकट का डिठा सा संग पे आज्ञा करे सा संग पे हमारे साग संग बिटे सब रोग नान सा पिटे संजो सा के मैं मां वेदना जाने जेता सुने तेता बखे आन है साधु माता गुण ते दूर साधु मारे परपुर साग सुबह का नाही अंश साग सुबह सुधा भी अंश साग सुबह उचे उचे साग सुबह मुचे मुचे

ब्रह्म ज्ञानी सदानंद लय जस जल में कमलालय ब्रह्म ज्ञानी सदानंद दो जस सुर सर्व को सुख ब्रह्म ज्ञानी के दुष्मान जस राज रंग को लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी के तीर जम सुदा को खुद को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी कै गुनाव नान जो पाव कै स्वय स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जस मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मन प्रकाश जैसे तरियो पर आकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्रु समान ब्रह्म ज्ञानी के नाय अभिमान ब्रह्म ज्ञानी उच्चे उच्चा मन अपने सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी स्वे जन पे नान जन प्रभाव करे ब्रह्म ज्ञानी स्वगल के रे ना तमरा ब्रह्म ज्ञानी चिन्ना ब्रह्म ज्ञानी के सब पर मया ब्रह्म ज्ञान तक बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा सुंदर से ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट अमृत बरसी

ब्रह्मज्ञानिका दृढ़ पाकी पाई है ब्रह्मज्ञानिको बल बल जाइए ब्रह्मज्ञानिको खोजे महेश्वर नानी ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्मज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्मज्ञानी के सकल मनमाए ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने पेद ब्रह्मज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न दयादाकर ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकर ब्रह्मज्ञानी कीमत कौन बखाना है ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जानना है ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार नान ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का करता ब्रह्मज्ञानी साजीव नहीं मरता ब्रह्मज्ञानी मुग जुगजी का दाता ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्मज्ञानी का सब

मिथ्या ना ही रसना पर सुमन में प्री निरंजन दर्श पर त्रय रूप निर्पेक्ष नेत्र साग टैल संसंग हेतु कर्ण सुन काव की निंदा सत्य जान है आप उसको मंदा गुर पर साविख्या पर रह मन की वासना मन ते टराय इंद्री जत पंच दो तेरात नान कोड में देखो ऐसा परस बैसनो सो जिस पर सो पर सान व्यसन की माया ते हो पहनना कर्म कर तो है न कर्म न तस व्यसन का निर्मलता रम काव फल की इच्छा नहीं बाचे केवल भक्त पूरे कीर्तन संग्रह चाहे

सगल संगातम दास असुजुगत नानक राम दास प्रभु की आज्ञा तमेता वीम सौ कहा वाय।

कई कोट जाकिंद्र पे स्वास कई कोट भूत पे सुकर मेरे गाच सब टेनेरा सब तूर नानका बलब त्रिया पर पूर कई कोट पताल के वासी कई कोट नर्क सुर निवासी कई कोट जन्म जीव मरा कई कोट भजो निपराय

जीव बन सब की राज कर कर पूर्ण ब्रह्म प्रकाश अपनी बनता बनाई नाने दिवे देख बढ़ाई इसका बल नाय स्वार करण कराम सर्व को नाथ आज्ञाकारी वपरा जियो जत पावे सोई पंथ कमो उच नीच में बस कमो सो घर कर रंग ऐसा कमो

क्रोध विकराल कमो सर्व क्योत्र वाल कमो हो राजा कमो बेकारिणी कैसा जा कमो आप किरत में आवे कमो भला भला कहावे जे प्रवरा खेत वीर है गुर प्रस्था नानी सच कह है कब हो पंडित करे व्यान कब मोन तारी लावे त्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू शिव साधन ज्ञान कबू कीट हस्त पतंग ज्ञान जौन परमे परमिया नाना रूप जस्वा की दिखावे जो प्रपा

पति जिसके अंतर्राज अभिमान सो नरक पति हो वसुमान जो जाने में जो बनवन सो विष्टा कर जंत आप को करवंत का वजन मरे भोजन परमावतान भूम का जो कर कुमान सो मोर खंदा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसाय नान क्या होता के सो पावे धनवंता हो कर कर भाव है तिर समान कर संग न जाव है बोल उस कर मन को पर करे आस पर पत पाल पितरता का हो विनाश सब ते आप जाने बलवंत खन में वे जाए पसुमंत किसे न बदे आप अंकार धर्म राय जिस करे खुआरी गुरु प्रसाद झांका मिटे अभिमान सो जन नानक दरगाह परवान कोट कर्म करे हो तारे शरम पावे सगले बिरतारे नक तपस्या करे अहंकार नरक सुरोग फिर फिर अवतारे अनक जतन करा तमने दरबार दरगा को कैसे गावे आप को जो पला कहा वैसे भला निकट ना वे सर्व के रेंद्र का मनोय को नाने तंगे निर्मल सोए

बृहस्पति संत के दुख न अर्जा कटाय, संत के दुख जमते नहीं छुटाए, संत के दुख सुख सब जाए, संत के दुख नरक में पाए, संत के दुख न मतो मलिन, संत के दुख न सोबत हीन, संत के दुख रखना

संदकानंद के माते आरा संदकानंद के परमेश्वर मारा संदकानंद के रायते हैं संदकानंद के नंद के दुखियार देन संदकानंद को सर्वरोग संदकानंद को सदा भेजोगा संदकानंद निंदा दोख में दोख नान संपावेता उसका पे मोख संदका दुखे सदा पे संदका दुखी के से काने मेत संदका दुखी को डन लागे संदका दुखी को सब त्यागे संदका दुखी महंकारे संदका दुखी सदा विकारे संदका दुखी जन्म मरा संदका दुख न सुख तेटराय संदका दुखी को ना इठाओ नान संपावेता ले मिलाए संदका दुखी अभी ते टूटे संदका दुखी के ते काज ना पहुंचाए

एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पौ जायस्पदी मन कीटे वृथि सब जान देवन को एक क्या भगवान जी क्या दिया राय गाय बोनस न लागे आये मारे रखे को आ मन के कितना ही हाथ तिरका हुकम सुको तिरका नाम रंगकंड ब्रो सिमर सिमर सिमर प्रसोए नानी बिघन लागे कोय सुमर में कंद्रंकार करो मेरे सद व्यवहार

चरण सागत और तो भी और को अपना जीव सागत और करो इतना साधु पर दाय कुर्बान साधु पगी पग सा संगर कीर्तन गाइए अनेक भगंत साधु राखे और गुण गाय अमृत साखे उड़ गए संत सर्व सो नान थे पाया अमृत को जीवाल हर पुखे को देवत आधार

परस्परी संदजनाम करो विचार एक सिमर नाम आधार वर पास मित वसार चरण कमर दमाय रतारो करण कारण सो प्रसमरथ ज कर गौ नाम अरवात हो तन संजो भगवान संजन का निर्मल मंत एकासरा खो मन माय सर्व रोग नानक मिट जाए जिस तन को चार कुन रुटता में सो तन हर सेवा ते पावे जिस सो को बच नित बच मित सो साधु संग परी जिस बाको कला करा पली करने सासो भाव धरकी स्वरणी अनको पावे रोग न दाय रोग मिट हरो खदलाए सर्व धन मेरे नाम निधान जप नानक दरगा परवान मन पर बुद्ध वर के नाय दावते आवे ठाए तो गोविघन लागे कोई जा

आवागन मटे प्रभ सेव आप त्याग चरण कर देव एवं रतन जन्म का हर हर सिमर प्राण आधार अनेक पावना छोट

प्रभक्तन दीन दयाल भगत वजल सदा कृपाल नाथ नाथ गोविंद गोपाल सब कटा करत प्रतपाल आदि पूर्व कारण करतार भगत जन के प्राण दार जो जो जपे सोय पनीत भगत पाय लावे मन हित।

सब समुद्र सीता का बेता नान सकल सिद्ध का जेता जी जंत्र सप्ताह के हाथ दीन दयाल नाथ को नाथ जिसरा कहते कोई न मारे सोम जिस मनो विसारे तेज तब कांको दाय सब सुर एक निरंजन राय।

सत्संग मिल करो नंद गुण गाव प्रमा नंद राम नाम तक करो विचार तो लभ टेका करो द्वार अमृत वचन के गुण गाओ प्रांतर कह है सुहाओ।

चेष्टा दूर का को जाय उपरे रखना त्याय नरपो जब सकल्प मिटा प्रभु कृपा ते प्राणी छुटाए जिस प्रभा कहत ना हिंदू नाम जब मनो वसु चिंता जाय मिटे अहंकार ते सब जन को कोई ना पहुंच न हार सिर ऊपर ठाठा गुरु सूरा नान तंगे कार्य पूरा मत पूरी अमृत के दृष्ट दर्शन पेगत उदर श्रेष्ठ है चरण कमल के अनूप सबल दर्शन सुंदर रूप तन सेवा से परवान त्रजा में प्रभु प्रधान जैसे मन बस

बंतन पर्वत पार ब्रह्म दस्या गत स्वक्रम पौन पाणी बैसंतर माय चार कुंड दिशा समाय तस्त पैरण कोटांग प्रथान सुख पाओ वेद प्राण स्मृत में देख सस्य सूर्य नक्षत्र में एक बाणी प्रभ की सबको बोले आप डोल कब डोल लाए सर्व कला कर खेला खेल मूल न पय गुणा मोल सर्व ज्योत में जाके ज्योत हरो स्वामी ओत पोत गुर प्रथा ब्रह्म का ना सुनान तन में विश्वास संजना का पेखन सा ब्रह्म संजना के हृदय साव धर्म संत जना सुनो।

महारहाउ आकर्षक राय अमृत प्रभानी कहो नानक जप जीवे ज्ञानी बुलावल महला भजवा सहा।

मन लाग बुलावल महला बया रोग गया प्रभाव गवाया नींद भई सुख सहज कर आया राव रज रज भोजन खावो मेरे भाई अमृत नाम रिद माहे दयाई नानक गुरबोरे सरनाई जिन अपने नाम की पैज रखाई बुलावल महला पंजवा सतगुर कर दीने अस्तर कर बार रहाओ जो जो निंद करे इन ग्रहण की तेसा गेही मारे करतार नानक दास ता की शरनाई जाको शब्द खंड बार बुलावल महला पंजवा ताप संताप संवले गए बिनसे ते रोग पार ब्रह्म तू बख्शिया संतन रस भोगराओ सतसुखां तेरी मंडली तेरा मन तन रोग गुण गाओ नित राम के एह अवकत योग आए वसो कर देश में बले संजोग नानक प्राव सो प्रसन्न भए लह गए बेयोग बुलावल महला पंजवा काहूं संग ना चल ही माया जंजाल ओट सदारे छत्र बद संतन के ख्या रहो अहमद कौ बिसना एह तुरगी टाल भौ जोनी जन्मे मरे बिख्या बिकराल सत वचन साधु कहे नित जमे गोपाल सिमर सिमर नानक तरे नानक के रंग लाल बुलावल महला बजा सहज स्वाद आनंद सुख पूरे गुरदीन सदा सहाई संग प्रभ अमृत गुण चीन रहाओ जय जयकार जगतर में लोचे सब जिया सो प्रसन्न भय सतगुरु प्रभु केश विघ्नाथिया जा

कर लिहे। बलावन महला वजा एक टेक गोविंद की त्यागी अनास, सब पर समरत प्रभ पूरन गुणदास। जन का नाम दार है प्रभ सरनी पाहे, परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे राव। आप रखे आप देव सी आपे व्रत पारे, दीन दयाल कृपा दे सारे। करन हार जो कर रहा साई वड्याई, गुरपुरे उपदेसिया सौख खसम रजाई। चिंता देसा गणता ज जन हुकम जाता, नै मिनसे नै छोड़ जाई नानक रंग राता। बलावल महला वजा महातवत ते पई सात, पर सत सब नाटे अंध कोप मैं गलते काढ़े देहाते। ओए हमारे साजना हम उनकी रेन, जिन बेटत हो सकी जी दान दे रहो। परा पुर बला लिखिया मिलया वाए, बात संग हर साध के पूरन आसाए।

प्रगट सब माहे प्राव के सेवक सरन प्राव तिन को भव नाहे बुलावल महला बजा बंधन काटे सो प्रभु जाके कर हाथ अवर कर्म नहीं छूट गए हे राखो हर नाथ तुम सरनागत माधवे पूरन दयाल छोड़ जाए संग सार तेरा के गोपा राव आशा परम बेकार मो इन माहे लुभाना झूठ हस मगरी मन वसी पार ब्रह्म न जाना परम ज्योत पूरन पुरख सब जी तुम्हारे ज्यो तो राखे त्यो रहा प्रभ गम बारे करण कर समरत प्रभ देह अपना नाव नानक दरिये सा संग हर हर गुण गाऊं बुलावा।

शीतल मन भया, घर बोरा आराध्या सगला दोग गया, राकन हरे राख्या अपनी करमया रहो, बां पकड़ प्रभ काढ़िया की ना अपनाया, सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निर्भया रहो। बुलावल महला भया कर तर मस्तक ताप्या, नाम दीनो दान सफल सेवा पार मम की ताकी नहीं हान, आपे ही प्रभ राखता भगतन की आन, जो जो चतवे

सेवो सदा करो कर दाय अभय दान पाओ वर्ग दाते मेल संगत हर गुण गाये रसना क्या गए गुण राती नैन दस रंग लाए ओ कर बाल दीन दुख भजन मोहे चरण हृदय वसाए सबो तले तले सब ऊपर ए दृढ़ दृढ़ाए अपमान खोए खोए खोए ओ मोको सतगुर मंत्र दड़ाए अतुल अतुल न तुलिए भगत शल कर पाए जो जो सरण भरियो गुरु नानक अभय दान सुख पाए बुलावल महला भजा प्रभ जी तू मेरे प्राण दारे नमस्कार डंडौत मंदरा अनक बार जाऊं बारे राव उठत बैठत सोवत जागत ये मन तुझे तिज तारे सुख दोष सुख दोख इस मन की वैसा तुझ ही आगे सारे तू मेरी ओट बलबद तन तुम ही तुम्हें मेरे परवारे जो तुम करो सोई बल हरे बेख नानक सुख चरनारे बलावल महला भजा सुनियत प्राप्तो सगल धारण मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मने बसाराओ संच मिख्याल है ग्राज कीनी अमृत मंत्र डारन काम क्रोध लोभ रत निंदा सत संतो विदारन इनते काट लियो मेरे स्वामी।

कोई बेचारा, ब्रह्म मेरे का बड़ बरसाव। सिमर सिमर सिमर संभाया, चरण कमल रख मन माही, ताकि सरन भरियो नानक दास, जाते उबर को नहीं बुलावल मल्ला वजा। सदा सदा जपिए ब्रह्म नाम, जरा मरा

तैसो रसना का मोल किश नाही राव कुल समूह उदरे किन मित्र जन्म जन्म के मल राही सिमर सिमर स्वामी ब्रह्मणा आनंद सहती बिख्या बन गाही राव चरण प्रभु के बोहत पाए पव सागर पार बराही संत सेवक भगत हर ताके नानक मन लागा है ताही बुलावल मल्ला बजा तीरो देख तुम्हारे रंगा तुम्हें स्वामी अंतर जामी तुही बसे साध के

संत जना तन बाल नानक जाचक दस ब्रह्म मांगे संत जना की मिले रवाल बलावल महला वजा सिमरत नाम कोट जतन पए सार संग मिल हर गुण गाए जम दूतन को त्रास हिराओ जेते बने चरण से कीने मंत्र प्रभु के चरण गए आवन जान ब्रह्म भव नाठा जन्म जन्म के किलवक दहे निर्भो होए पजो जग देसे ए बदास बट पागल है करके पाप पूरन प्रभु दाते निर्मल जस नानक दास कहे बलावल मल्ला बजा सोलही ते नारायण राग सुली का हाथ कहीं ना पहुंचे सुली हुआ मुआ ना भाग रहा काट पटार कसम से काटिया खिन में हो गया है खाग मंदा चेतवत चेतवत बचया जन रचया तिन दीना ताग पुत्र मीर तन किशु ना रहे सो छोड़ गया सब पाई साग कहो

अंत की कर अवर बाला, आठ पैर तेरा नाम जन जावे, नानक प्रीत लाई प्रभावे, बलावल महला वजा, मन तन जोबन चल गया, राम नाम का भजन कीनो,

ऐसी दिखा जन से मंगा तुमरो ध्यान तुम्हारो रंगा तुम्हारी सेवा तुम्हारी अंगा रहो जन की टहल समागन जन से उठन बैठन जन के संगा जन जन चर राज मुख माथे लागी आशा पूर्ण ततरंगा जन पार ब्रह्म जा केंद्र मल महमा जन के चरण तीरथ कोड़ गंगा जन की तोर कियो मज्जन नानक जन्म जन्म के हर एक लंगा माल बलावल मल्ला भजा जो पावे तो मोहे बिरबाल पार परमेश्वर सागर हम बार का तुम पिता कृपाल राहो मोहे निर्गुण गुण कोई पहुंचना साको तुमरी काल तुमरी गत में तुम ही जानो जियो पिंड सब तुम रो माल अंतर जामी बरग स्वामी अनबोलत ही जानो हाल तन मन शीतल होए हमारा नानक प्रभ जियो न धर निहाल बलावल महला वजम हराक सदा प्रभ अपने साथ तो हम रो प्रीतम मन मोहन तुझमन जीवन संग लकात राओ रंग ते राओ करत कर मित्र प्रभ मेरो अनाथ को अनाथ जलता गन में जन आप धारे करे

मर जाने ऐसा कोए। सेवो साहिब सम्राथ अपना पंथ सुहेला आगे होए, पंथ सुहेले जावो ता फल पावो आगे मिले वडाई। भेटे स्यो जावो सच समावो ता पत लिखे पाई, महली जाए पावो खसमे पावो रंग स्यो रलिया माणे। मरन ना मंदा लोका आखिए जे कोई, मर जाने मरण मुनसा सूर्या हक है जे होए मरन परवाणो।

सचे के गुण सारे जल मल जानी नावा लिया कपड़ पाटे अंबारे वाजे वजे सची बाणिया पंचमुए मन मारे जानी विछुनड़े मेरा मरण पया त्रिग जीवन संसारे जीवत मरे सो जानिए फिर सचड़े हित प्यारे तुसी रोव रोवन आई आओ झूठ मुठी संसारे ओ मुठड़ी धंधे धावनिया फिर छोड़ी अड़ी विदन कारे घर घर कंत मेहलियां रूड़े हित प्यारे मैं फिर सच सलाना हो रह सिड़ी नाम पतारे गुर मिले वेस पलटिया।

ज्यों बाजी घर भरमे भूले झूठ मुठी हंकार आपे मार्ग पावन हारा आपे कर्म कमाए नाम रते गुर पूरे राखे नानक सहज सुभाए वडंस महला पहला बाबा आया है उठ चलना एहो जग झूठ पासारो वाह सच्चा घर सचड़े सेवीए सच खरा सचया।

नानक जुग जुग जान सजाना रूवै सच समाले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वधाइयां रागर तन परवार परियां शब्द गावने आईयां शब्दो तां गावो हरि केरा मन जनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हरनाले हरनाल रहो तू मन मेरा दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्ज सब सवारना सबना गला।

लोकनाथ पछाणे मन डीग डोल न जाए कत ही अपना फिर जाने। मैं आधार तेरा तू खसम मेरा, मैं तान तकिया तेरा साच सुचा सदा नानक गुरु शब्द चगर नवेरो। छंत बिलावल महला चौथा मंगल एक अंकार सतगुरु प्रसाद मेरा हार प्रभ सिद्ध आया। मन सुख सुवाणा राम गुरु तुठे हर प्रभ पाया, रंग रलिया माणा राम वडभागिया सुहागणी हर मस्तक माणा राम। हर प्रभ हर सुहाग है नानक मन पाणा राम, निमाण्या हर माण्या हर प्रभ हर आपाय राम। गुरु काव गवाया नित हार हर जापाय राम।

जनमे नाराम सफल धनम हर पाया नानक प्रभु के नाराम। बिलावल महला चौथा श्लोक। हर प्रभु सज्जन लोड़ लो मन।

अज्ञान अंधेरा कटिया जोत प्रगटे आई राम। जन नानका नाम आधार है हर नाम समाई राम। तन हर प्रभ प्यारे राविया जा हर प्रभ पाई राम। अखी प्रेम कसाया जो

तन तन गुरु साहबा सहजन होमे मारी राम जन बड़ भागिया बड़ भाग हर हर उर तारी राम जन नानक नाम सलाहे तो नामे बले हरि राम बिलावल महला पंजवा चंत एक ओंकार सतगुरु प्रसाद मंगल साज पया प्रभ अपना गाया राम अविनाशी वर सुनया मन उपजया चाहया राम मन प्रीत लागे वड्डे भागे कमलिय पूर्ण पतै सहज समाइय गोविंद पाइय देहो सखिय मोहे मते दिन रैन ठाडी करो सेवा प्रभ कवन जुगति पाया बिनवंत नानक करहो कृपा लोह मोहे लड़ लाया भया समाहड़ा हर तन साह राम खोजी खोज लद्दा हर संतन पाहराम मिले संत प्यारे दया तारे कथया कथ विचार हो एक जते कमंत आए स्वामी लाए प्रीत प्यारो

स्वाहा अटल गणया पूर्ण संजोग राम सुख समुपया गया विजोगो राम मेरे संत आए प्रवत आए बनया चरद जान जिया मेले कतर हो सहज टोए मन प्रीत उपजी मान जिया मिल जोत ज्योति ओत पोति अरनाम सब रस भोगो बिनवंत नानक सब संत मेली प्रभ करण कारण जोगो पवन सुहावड़ा तरत सुभागी राम प्रभ घर आयड़ा गुरचरण लागे राम गुरचरण लागे सहज जागे सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत तुरी हर मिले कंत विचुनिया आनंद अंदन वजे वाजे अंग मत मन की त्यागे बलवंत नारे सन स्वामी संत संग ले लागे बिलावल महला पंजमा

राम आनंद अंदर वजे वाजे दिन श्रेण महा रोग सोगन दुख व्याप जन्म रिद सिद्ध सुधार समृत भगत परे भंडार बिरवंश नानक बलिहार वंजा पार ब्रह्म प्राण आधार सुन सखिया सहलड़ियो मिल मंगल गावा राम मन तन प्रेम करे तिस प्रभु को राव है राम कर प्रेम राव है तिस पावे निमुख पलक ना त्यागी है गय कंठ लाइए न लजाइए चरण राज मन पागिय भगत ठगोरी पाए मोह अंत कथु न ताव है बिरवंत नानक मिल संग साजन अमर पदवी पाव है बिस्मन बिस्म पही पेख गुण अविनाशी राम कर गल पूजा गही कट जमकी भाषी राम गय पूजा लीन दास गिने अंकुर दोत जनाया मरण मोह विकार नठ दिवस निर्मल आया दुष्ट तारी मन प्यारी महा दुर्मत नासी बिनवंत नानक पही निर्मल प्रभ मिले अविनाशी

मनम विकार दूजा सेवेक निरंजनो लाग चरण शरण दयाल प्रीतम सगल दुरत विखंडनो हो दास दास तज दास बौड़ विधि नाथावा नानक पयम पय कर कृपा ता मंगल गावा अमृत प्रिय का नाम अंदुल टोहनी हो जो है वो प्रकार सुंदर मोहनी मोहनी महाबचित्र चंचल अनक पाव दिखावे होए टीठ मिठी मन लागे नाम लैण नायावे ग्रह बन तिर व्रत पूजा कर पाठ घट जोहनी नान पयम दया तारो मैं नाम अंदुले टोहनी मोहे अनाथ प्रिय नाथ ज्यो जानो त्यो रखो चतुराई मोह नाय रिजावो कह मुख न चतुर सुगुण सुजान बेते मोह निर्गुण गुण नहीं कोई नह चतुर सुगर सुजान बेती मोह निर्गुण गुण नहीं नह रूप तूप न नैण बंके दे पावे ते रख तू ही

मछली तुम नीर तुझ मन के अवसर आय मोह चात्रक तुम बूंद तृप्त मुख पराय मुख पराय हरे प्यास मेरी जी जी आ जी ही आ प्राण पते लाडले लाड लडाए समय मिल हमारी होए गत चित चित

महावीश्वराय, तन तन हमारे भाग कर आया फिर मेरा, सोहे बंक द्वार सगला बन हरा, हर हरा स्वामी सुख गम आनंद मंगल रस कणा, नवल नवतन नहबल कमल रसना गुणपणा, मेरे सहज सोहि देख मोहि सगल सह

मंगल एक ओंकार सदगुरु प्रसाद श्लोक सुंदर शांत दयाल प्रभ सर्व सुखानंद पियो सुख सागर प्रभ भेटी है नानक सुखी होत हो जियो चंत सुख सागर प्रभ पाइये जब हो वे भागो राम मानन मान वंजाई है हर चरणी लागो राम छोड़ सियानव चातुरी दुर्मत बुद्ध त्यागो राम नानक पव शरणाई राम राय थिर होए स्वागो राम।

श्री गोपाल नावचरे बल कहिए दो चारण रचना राम प्रभ भगत वचन सेवई काया का ग्रसना राम प्रम

सदगुरु ते खाली को नहीं मेरे प्रभ मेल मिलाए, सदगुरु का दर्शन सब लह देह को इच्छे ते आप पाए। गुर का शब्द अमृत है सब ते सुना पुख गवाए, हर रस पी संतोख हुआ सच वसिया मन आए। सच त्याय अमरा पद पाया न शब्द बजाए, सचो दस पसरिया गुर कैसा सुभाए। नानक जन अंदर सच है से जन छपे न किसे दे छुपाए, महला तीजा गुर से

नंदक दुष्ट आई वेख न सकनो न पराया भला न सुखाई क्या होवे किसके किस ही की झक मारी जा सच्चे स्यों बने आई जे गल करते पावे सो नितन चढ़े सवाई सब चक चक मरे लुकाई सुरुख महला तीजा त्रिग एह आसा दूजे पाव के जो मोए माया चित लाए हर सुख पलर त्यागया नाम विसार दुख पाए मन मुख अज्ञान अंधले जन्म मरे प्रिया बचाए काल छेद न होनी अंत गया पछताए जिस नद कर्म होवे तिस सगुर मिले सुहरा नाम त्याए नाम रते जन सदा।

साहब सिकदार हैं तितने सब हर के किए। जो किस हर करावे सो करे सब हर के अर्थिये। सो ऐसा हर सबना का प्रभु सतगुरु के बल है। तिन सब वर्ण चारे खानी सब सिष्ट गोले कर सतगुरु आगे कर कमावन को दिए। हर सेवे की ऐसी वड्याई देखो हर संतोजन विचों का है। नगरी दुश्मन दूत सब मार कढ़ी है। हर हर कृपाल हो सतगुरु जना ऊपर हर अपनी कृपा कर हर आप रख लिए। श्लोक महला तीजा अंदर कपट सदा दुख है मन मुक्त ध्यान न लागे। दुख विचकार कमावनी दुख वरतै दुख आगै। कर्मी सतगुरु भेटी आए ता सच नाम लिव लागै। नानक सहजे सुख होए अंदरों भ्रम पौ भागै। महला तीजा गुरुमुख सदा हर रंग है हर का नाव मन पाया। गुरमुख वेखण बोलना नाम जबद सुख पाया। नानक गुरमुख ज्ञान प्रकाशया तिमरा ज्ञान अंधेर चुकाया। महला तीजा मानमुख मैले मरै गवार गुरमुख निर्मल हर राख्या और तार। पंत नानक सुनो जन पाई सतगुरु सेव होमे मल जाई। अंदर संसार दुख व्यापै सिर तंदा नित मार दूजे पाए सुते।

मार करे खुआर पौड़ी जिसनो हर भगत सच बख्शन सब सच्चा सा हो तिम तदि लोक कटदा होरत हट ना वत ना विसाह भगत जना को सर्म को वे स्वर रास ले।

तो परम बुलाया गुरुप्रसाद दीना मन वसया अंद नाम से आया भिख्या माय उदास हम शब्द जलाया आप तरया कुल उधरे तन जनिंदी माया सजा सहज सुख मन वसया सचे सुन लाया ब्रह्म विष्णु महादेव त्रैगुण भुले हम मोह बधाया पंडित बड़ पड़मोली भुले दूजे भाई जितलाया जोगी जंगम सन्यासी भुले बिनगुर तत् न पाया मनमुख दुखी सदा परम भुले तिन बिरथा जन्म गवाया नानक नाम रत सही जन समे जे आपे भगत मिलाया महला तीजा नानी सो सलाहिये जिस वस सब किस होए तिसै सुरे व प्राणियो तिपने अव न कोय गुरमुख अंतर मनव सहे सदा सदा सुख होए पौड़ी जिन्ने गुरमुखा नाम तन न खट्यो से दिवाली है जुग माए ओय मंग दे परे सब जगत में कोई मुंह थुक न तिन को पाए पराई बखेली करे अपने प्रति दुखोवन सगवा पी आप लखाए जिस तन कारण चुगली कराए सो तन चुगली हथ न आवे ओय भावे तिथे जाए गुरमुख सेवक पाए हर तन मिले तिथो कर्महीन लै ना सके होर था देश दसंतर हर तन नाहे सुरुख महला तीजा गुरमुख हंसा मूल गुरमुख संसा मूल न होवे चिंता विचों जाए जो कित होए सो सहजे होए कहना किछु न जाए नानक तिनका आखिया आप सुने जे लैन पन्ने पाए महला तीजा काल मार मनसा मने समाणी अंतर निर्मल नाओ अंजन जागे कदे न सोवे सहजे अमृत पियाओ मिठा बोले अमृत बाणी अंदन हर गुण गाओ निकर वासा सदा सोहदे नानक तिन मिलिया सुख पाओ पौड़ी हर तन रतन जुवे हरी सो गुर हर तन हर पासों देवाया जे किसे कहो दिस आवे ता कोई क्यों मांग ले अके कोई कहो देवाए एहो हर तन जोर किते किसे नाल ना जाए बंडाया जिसनु सतगुरु नाल हर सरदा लाए तिस हर तन की वांडया ते आवे जिसनु करता तुर लिख पाया इस हर तन का कोई शरीक नाही किसे का खत नाही किसे के सीव बने रोल नाही देखो हर तन की वकील करे तिसका मुंह हर चौंक नाम काला कराया

हट विकाए गुर के सद प्रजा लिए ताए विचों जाए तन मन होवे उजला ना वसे मन आए नानक माया का मारण शब्द है गुरु पाया जाए पौड़ी सतगुर की वड्याई सतगुर दित्ते तुरों कंबज निशान पोती पती जवाई सकी अगों पिछे टोल डिटा लायन सबना का अभिमान जिथे गोवे कहते मेरा सतगुरु हर बख्शियो सब जहान जे सतगुरु नो मिल मने सो हल पलत सिजे जे मुख हुए सो फिरे परिष्ट थान जन नानक केवल हुआ मेरा स्वामी हर सज्जन पुरख सुजान।

अमृत नाम निदान कंठ्योर तारिया नानक साधु संग जन्म मरण सवारिया श्लोक महला तीजा जिन्नी नाम विसारिया कूड़े कहन कहन पंच चोर तिन कर मोहन होमे अंदर सन साकत मुठे दुर्मति हर रसना जानन जिन्नी अमृत परमे लुटाया भिक्षु रचय रचन दुष्टा सिद्धे परड़े जन सेवाद करन नानक साकत नरक में जाम बदे दुख सहन

रास गिरास सदा मन वसे जम जोहे न सकै तेस हृदय हर नाम रस कवला सेवक तेस हर दासा का दास परम पदार्थ तेस नानक पंद नानक मन तेस प्रभु वसे हम सत गुरबाणी तेस जिन को पूर्व लिखिया रस संत जना स्यो तेस पौड़ी जो बोले पूरा सदगुरु सो परमेश्वर सुनया सोई वर्त्या जगत में काट काट मुख बनया बहुत वड्याईया साहेब न जाही गणिया सच सहज आनंद सतगुरु पास सच्चे गुरमणिया नानक संत सवारे पार ब्रह्म सच्चे सच्चे ज्यों बनया श्लोक महला तीजा अपना अपना पछाणी और प्रभु जाता दूर गुरु के सेवा विसरी क्यों मन रहे हजूर मन मुख जन्म गवाया छुटे लाल जकूर नानक भक्त मिलायन सच्चे शब्द हजूर महला तीजा हर प्रभु सच्चा सोहिला गुरुमुख नाम गोविंद

पौड़ी। कोई निंदक होवे सतगुरु का फिर शरण गुरु आवे, पिछले गुण सतगुरु बख्शल सतसंगत नाल रलावे। ज्यों में बैठे गलियां नालियां टोपियां का जल जाए पवे, विच सुरसरी सुरसरी मिलत पितर पावन हो जावे। ए बढ़ियाई सतगुरु निर्वैर विच जित मिलिया तिसना, भुख तरे हर सांत तड़ आवे। नानके अचरज देखो मेरे हर सच्चे साका, जे सतगुरु नो मन सो सब न पावे। सुड बिलावल बाणी भगता की कबीर जियो की एक ओंकार, सत नाम करता पुरख गुर प्रसाद। ऐसो ए संसार पे कना रहन को पई है रे, सुध सुध रेख चलो तुम नतर कु धक्का दवई है रे। राहो

डानी रे, हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निरारी रे, आवे न जाए न कबहू मरते पार ब्रह्म संगारी रे, पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया एत जो जी जानी रे, कह कबीर सुनो रे संतो मिले सारंग पानी रे, बिलावल विद्या न प्रभात नहीं जानो हर गुण कथित सुनत बौरानो, मेरे बाबा मैं बौरा सब खलक सियानी, मैं बौरा मैं बिगरे बिगरे मत औरा, राहो अपना बौरा राम क्यों बौरा, सतगुरु जार गयो ब्रह्म बौरा, मैं बिगरे अपनी मत खोई, मेरे परम पुलो मत कोई, सो बौरा जो आप न पछाने, आप पछाने ताई क्या जाने, अभिन माता सुख अभिन माता कह कबीर राम रंग राचा, बिलावल ग्रह ताज बन खंड जाइए चुन खाइए कंदा, अजो बेकार न छोड़े पापी मन मंदा, क्यों छूटो कैसे तरो पवजल निद पारी, राख राख मेरे बिठला जन शरण तुम्हारी, राव

लावल नेतेट गोरी गागरिया ने लिप्त दियो गयो ताना बाना कचुना सुदे हर हर ला रस लपटे हमारे कुल कौन राम कहो जबकि माला लेन पोते तब ते सुख ना पहो राहो सुनो जठानी सुनो दरानी अचर दिए कपायो सात सूत इन मुंडियो खोए ए मुंडिया क्यों ना मुयो सर्व सुखा एक हर स्वामी जो गुरु नाम दयो संत प्रहलाद की पै जना जन राखी हर नाग सनक बिदरियो घर के दे पितर के छोटी गुरु को शब्द लायो कैद कबीर सुन सगल पाप खंडन संत लै उदरियो बिलावल को हर समान नहीं राजा ए पुपत सब दे विचार के झूठे करत दिवाजा रहो तेरो जन होए सो एक हथ डोला तीन पवन पर छाजा हाथ पसार सके को जन को बोल सके ना अंदाजा

मिथ्या काचे गगरे जन निवास साजम किए तिसे बिसार अवर लगरी संदक तो साधने कहो शरण पर तुमरी पगरी कह कबीर बिनती सुनियो मत कालो जम की खबरी बिलावल दरमा दे ठाडे दरबार।

त्यागे सर्वनन सुनियत सुजस तुम्हार, मांगो काहे रंक सब देखो तुम ही ते मेरो निसार। जय दो नामा बेप सुदामा तिनको कृपा पई है अपार, कह कबीर तुम समरथ दाते चार पदार्थ देत न बार। बिलावल डंडा मुद्रा खिंता आधारी, प्रमु के पाए पवै पेख तारी। आसन पवन दूर कर बबरे, छोड़ कवट नित हर पज बबरे। रहाओ जे तुम जाचे सोत्र पवन भोगी, कह कबीर कह सो जग जोगी। बिला

ත්‍රෙග ත්‍රෙග මත බන් බොද්ධ පන්නේ इस माया को दृढ़ कर रखो बांध है आप वचनी क्या खेती क्या लेवा देवे परपंच चूट गमाना कह कबीर ते अंत भगुते आया काल निदाना बिलावल शरीर सरोवर पीतरे आचे कमलानूप परम ज्योत पर खोतमो जा कह रे खना रूप रे मन हार पज प्रम तजो जगदीव नाम रहाओ अवर कछु न दिसै न दिसै जात नय जय उपजय बिन सहत।

मले च मन सोए। होए पनीत भगवंत भजंते अवतार तरे तारे कुल दोए। धन सो गाओ धन सो ठाओ धन पुनीत कुटम सब लोए। जिन पिया सार रस तजे आन रस होए। रस मगन डारे बिख खोए। पंडित सूर छत्र पर राजा भगत बराबर और न कोए। जैसे पुरैन पात रह जल समीप भन रविदास जन्म जगोए। बाणी सदने की राग बिलावल एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। निरिप कन्या के कारण एक पया पेख धारी। कामार्थी सुवारथी वाकी पैज सुवारी। तब गुण का जगत गुरा जो कर्म न नासै। सिंह शरण कत जाइए जो जम बुक ग्रासै। राहौ

अकाल मूर्त अजुने सह भंग गुरु प्रसाद रागोंड चौपदे महला चौथा कर पहला जे मन चित आस रखें हर उपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई हर जाने सब कुछ जो जीव ते प्रभु घालिया किसे का एक तिल ना गवाई हर तिसकी आस की जय।

ज्योतिषे माया मुकुटम सब मत की आसलक जन्म गवाई इनके किस हाथ नहीं कहा कर ए बपुड़ इनका बाहया कछ ना वसाई मेरे मन आस कर अर्पित हूँ अपने की जो तुझ तारे तेरा कुटम सब छुड़ाई जे किस अवर कर परमित्री मत जाने तेरे किते कम आई ए आस परमित्री पाओ दूजा है किन में झूठ बिन सुझब जाई मेरे मन आशा कर अर्पितम साचे की जो तेरा कल या सब छाए पाई आशा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी जैसे तू आस करा मैं तैसी को आस कराई किच किसी के हाथ नाही मेरे स्वामी असी मेरे सगुरु भुज बजाई जन नानक की आस तू जाने हर दर्शन देकर दर्शन त्रिपताई गौंड महला चौथा ऐसा हर सेविय नित त्याई है जो खिन में किलविख सब करे बिना सा जे हर त्याग अवर की आस की जय ता हर निफल सब काल गवासा मेरे मन हर सेवे सुदाता स्वामी जब सेव्या सब भूख लहसा मेरे मन हर ऊपर की जय प्रवासा जे दाई तय नाल मेरा स्वामी हर अपनी पैदर के जनदासा रहो

तत्काल कटाचा। सो ऐसा प्रभु छोड़े अपनी वृथावरा पै कहिए अवरा पै कह मन लाज मरासा। जो संसार के कुटुंब मित्र भाई दिसे मन मेरे ते सब अपने स्वाय मिलासा। जित दिन उनका सुहाओ हो न आवे इत दिन नेड़े को न तू घाथा। मन मेरे अपना हर सेव दिन राति जो तो दुभ करे दुख सुखासा। मन मेरे अपना हर सेव दिन राति जो तो धूप करे दुख सुखासा। तिसका प्रवासा क्योंकि जे मन मेरे जवंती अवसर रख न सकासा। हर जप मंत गुरुपदेस लजपो तन अंत चढ़ाए जिन हर प्रीत चेतासा। जिन नानक अंदर नाम जपो हर संतो ए छुटन का साचा प्रवासा। गौण महला चौथा हर सिमरत सदा हुए आनंद सुख अंतर शांत शीतल मनपना। जैसे सकत सुर बहु जलता सुर सस देखे ला जाए सब तपना। मेरे मन अनदन त्याय नाम हर जपना।

चरण में लोहार रसना शब्द पछाण राम रस पावो ए उत्तम संत पयो बड़ बड़ ना तिस जन की वड्याई हरे आप बधाई ओ कटे ना किसे दी कटाई एक तिल तिल तिल ना जिस ते सुख पावे मन मेरे सो सदा त्याय नित कर जुरना जन नानक हर दान एक दिजय नित बसर दे हरि मोय चरणा गौंड महला चौथा जितने सा पासा उमराव सिकदार चौधरी सम थिया झूठ पाओ दूजा जान हरे अविनाशी सदा तरण चल तुम मेरे मन भज परवान मेरे मन नाम हरि भज सदा दीवान जो हर महल पावे गुरबचने तिस देवड़े अवर नाही किसे दातान राहो जितने जनवंत गुलवंत मिलखवंत दिसे मन मेरे सबिन साई ज्यों रंग कु सांब कु चाण हर सात निरंजन सदा से मन मेरे जित हर दरगाह पावे तू माण

गौड़ महला चौथा हर अंतर जामी सब ते वर्त दे हर कराए ते को करिए सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे जो तुदन शब्द रख लिये मेरे मन हर जप हर नित पढ़िए बिन हर बिन को मार दीवाल न सके ता मेरा मन का इत करिए रहो हर प्रपंच किया सब करते विच आपे अपने जोत रहिए हर एक को बोले हर एक बुलाए गुरपुरे हर एक दिखाइए।

हमारे ऊपर परलोक में मजार जाके गत में तो कहीं ना जाए ऐसो प्रभान मेरे सदा ते आए आए ना जावे निचल तनी बे अंत गुना ताके के तक गनी लाल नाम जाके परे पंडार सगल कटा देवे आधार सत पुरख जाको है ना हो मिठे कोटे अग्नि में कुजा सुगाओ बाल सगाई भगतन को मीत प्राण धारना निक हित चीत गौण महला पंजमा नाम संकिन व्यवहार नमो इस मन काया धार नमो ही छदकिनी ओट नाम जोत बिटाय पाप कोट रास दे हरे को नाम मन काय सुगर संग चान राव नाम हमारे जी की रास नामो संगे जात कत जात नमो ही मन लागा मिठा जाल थल सब में नमो डिठा नमो दरगा मुख्य उजलय नाम सुगल कुल दराय नाम मारे कार सीध नाम संग मनवा गीत नाम ही हम नृपय नाम आमन जामन रय गुरपुरे मेले गुणतास कौ नानी सहज निवास गौण महला पंजमा निमाने को जो दे तो मान सगल भूखे को करता दान गर्व घोर में राखन हार तिथागर को सदा नमस्कार ऐसो प्रमन माहे ते आए काट अब काट जद कत है सहाय राव रंक राव जा कै एक समान कीट हत सगल पुराण बियो पूछ नाम तर जोग कराय सो आप कराय जाकांत न जान सको ए आपे आप निरंजन सो ए आप कार आप निरंकार कट कट कट सब कट आधार नाम रंग भगत पहलाल जस करते संत सदा निहाल नाम रंग जन रह अगाए नानक तिन जन लागे पाए गौण महला पंजमा जाके संग हो मन निर्मल जाके संग हर हर सिमरन जाके संकल्प कोय नास जाके संग हृदय प्रगास से संतन हर के मेरे मीत केवल नाम गाये जाके नीत राव जाके मंत्र हर हर मन बसाए जाके उपदेश परम पवन साय जाके कीरत निर्मल सार जाके रेन बसे संसार कोट पत जाके संग उदार एक निरंकार जाके नाम आधार सर्व दिया का जान पहो कृपा निधान निरंजन देव पार ब्रह्म जप कृपाल तब भेटे गुरु साध दयाल दिन रह नानक नाम त्याए सुख सहज आनंद हर नाए गौंड महला पंजवा गुर की मूर्त मन में ध्यान गुर के सब मंत्र मन मान गुर के जन हृदय लतारो गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कारो मत को परम पुल संसार गुर बिन कोय न उतर पार राहो भूले को गुरु मार्ग पाया अवर त्याग हर भक्ति लाया जन्म मरण के त्रास मिटाई गुर पूरे के बेअंत बटाई गुर प्रसाद उर्द कमल विकास अंधकार में प्या प्रगाश जिनकी आसो गुर ते जान्या गुर कृपा ते मुग्ध मन मान्या

छोटकार अंधकार में गुरुमंत्र द्वारा गुर के संग सगल निस्तारा गुरु पूरा पाए बड़ पागे गुर की सेवा दुख न लागे।

चर सह इनको छोड़ियो परजन बसाय कर कृपाजन लिए छटाए तिसके से तिन रखे हटाए जिसके से तिन रखे हटाए को नाने भगत प्रसार बिन भक्ति सब होए कुआर गौंड महला पंजमा काल कले सुमिटे हर नाए दुख बिन सहे सुख की नो ठाओ जप जप अमृत नाम गाए संत प्रसाद सबल फल पाए राम जपत जन पार परे जन्म जन्म के पाप हरे राव गुर के चरण दे और तारे अग्न सागर ते उतरे पारे जन्म मरण सब मिटियो पाद प्रभु सुना की सहज सुमाद

को जप जीवे प्रभ नाम। गौंड महला पंचमा धूप दीप सेवा गोपाल अनक बार बंदन करतार प्रभ के सरण गाहि साब त्याग। गुर सो प्रसन्न पय बड भाग आठ पैर गाय गोविंद तन तन प्रभ का प्रभ के जंद राव। हर गुण रमत पाए आनंद पार ब्रह्म पूर्ण भवसंद कर कृपा जन सेवा लाए जन्म मरण दुख मेट मिलाए। करम चरम तत् ज्ञान सत्संग जपिय हर नाम सागर तरबोध प्रभ चरण अंतरधाम प्रभ कारण करण। राख ले अपने कृपा तार दूत पंच दूत भागे विकराल जो है जन्म न कबो हार नानक किया करतार। गौण महला पंजम कर कृपा सुखानंद

काल को बंद जीजन सगले भक्त तेरे शरण प्रभ दीन दयाल पार ब्रह्म जब सदा निहाल रव प्रभ दयाल दूसर नहीं कोई प्रभ दयाल दूसर कोई नाही खड़गड़े अंतर सर्व समाही अपने दास का हल्द पल सुवार पतत पावन प्रभ बिरद तुम्हार औखद कोट सिमर गोबिंद तंत मंत्र

दुखंडेरा सगल जाए। हर गुण गाव तरिये संसार बड़पागी पाइये प्रकृपा पार राव जो जन करे कीर्तन गोपाल। तिसको भय न सका जम काल जग में आया सो प्रवान गुरुमुख अपना खसम पछाण। हर गुण गावे संत प्रसाद काम क्रोध मिटे उन्माद।

जागमे विरले कैके मोहि निर्गुण गुण किछो नाहि सर्वनिधान तेरि दृष्टि माहि नारी दिन जाचे तेरि सेव कर कृपा दीजे गुरुदेव गौण महल्ला पंचमा संत काली तत्व विदारु संत के नंद का काष्ट डारु संत को राखो अपने जी नाल संत उदार तत् गण ताल सोई संत जे पावे राम संत गोविंद के क्या काम राव संत के ऊपर दे प्रभात संत के संग बसे दिन रात सा सा संत प्रत्य पाल संत का दुखी राय से टाल संत की निंदा करो न कोय जो निंदा है तिसका पतन होए जिसको रखे सृजनहार चक मारो सगल संसार प्रभु अपने का पे अविश्वास जीव पिंड सब की रास नानक उपजी प्रतीत मर्मकार गुरुमुख साध जीत गौण महला पंचमा नाम निरंजन नि नारायण रसना सिमरत पाप बिलायण राव नारायण स्वामी निवास नारायण खड़खड़ प्रगास नारायण कहते नरक न जाए।

राम नाम वाका मन राता लड़के लड़कन खेबो नाये मुंडिया अंदन तापै जाए एक दो मंदिर एक दो बाट हमको सातरुन को वाखाट

पवित तपत विचर डोल चीत राव सो आगन कृपन के पोते सेवक ताज जगत स्यों सूती साधु कै ठाडी दरबार साधु के ठाडी दरबार शरण तेरी मुखो ने चार सुहागन अत सुंदरी पगने वर छनक छन हरी जर प्राण तो लग संगे नैत तले बेग उठ नंगे सुहागन पवत रालिया दस अठ प्राण तीर्थ रस किया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पेत बूढ़े पवत राधे हेदे सुहागन उर्वार न पार पांच नारद के संग भेदवार पांच नारद के मिटवे फूटे कौक

जैसे जलर बिना जमी नहीं बोये, सूट बिना कैसे मणि परोये, कुंडी बिन क्या घंट चढ़ाइए, साधु बिन तैसे अभक्त जाइए। जैसे मात पिता बिन बाल न हुई, बिन बिना कैसे कपड़े तो ही, कोर बिना कैसे अशुभ।

जमता छोटा है कोट कोट मन का स्वटी लावे सो कोटन मुक्त भव पावे कोटन के से कहो संसार सगल बोलन के माहे विचार रव नाचन सोए जो मन सो नाचे चूड़ना पति परचय साचे इस मन आगे पुरे ताल इस नाचन के मन रखवाल बजारी सो दो बजार सो दे पांच परिता को प्रबुद नौ नाय के भक्त बचन सो बजारी हम गुर मन तस्कर हो सोए दे तात न करे इंद्र के जतन नाम उचराय

ले रहो। नरते सुरहे जात निमिख में सगुरु बुद्ध सिख लाई, नरते उपज सुर को जीत्यो मैं अवखद में पाई, नरते उपज सुर को जीत्यो।

जाते थे, लेकर ठेगा टगरी तोरी लांगत लांगत जाते थे। पांडे तुमरा मांदे तौले पर चढ़िया, अब देखा था मोदी के करखाना पा।

नानक ज्ञानी सियाणा हिंदू पूजा देहुरा मुसलमान मसीत नाम सोई सेव्या जय देहुरा नाम सीत रा गौण बाणी रविदास जियो की कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद मुकंद मुकंद जपो संसार बिन मुकंद तन होए ओहार सोई मुकंद मुदका दाता सोई मुकंद हमरा पित माता

स्वीकार समेत सगले सिमरत सर्व ने सुनाए करे नंद कवना नहीं गुना जो अर्घ प्रसाद करावे पोम दान रूप शोभा मंडप पावे अपना बेगार पर आना सांडे करे नंद भोजन हांडे

राव। जय पितरगढ़ पितर बसिया बार काहे नाही, तिनके सार करने तो साहेब सदा चिंत मन माही। आपे नेड़ा आपे दूर आपे सर्वरे आपरपूर, सतगुरु मिले आंदे राजा है। जय देखा तैर है सुमाए, अंतर सहसा बाहर माया नैनी लागस बाणी। परमत नानक दास चन दासा प्रताप हैंगा प्राणी, राम करी महला पहला। जित दर वसै कवन दर कहिए, दरा पितर दर कवन लै है। जिस दर कारण फिरा दास सो दर कोय आय कहे, किन बिद सागर तरिय देवत्या ने मरिया राहो। दुख दरवाजा रोह रखवाला, आसान दिसा दोए पट जड़ै, आसान दिसा दोए पट जड़ै। माया जल खाई पानी कर बादया, सत के आसन पुरख रह। कितै नामा अंत न जानिया, तम सर नाही अवर हरे। किंते नामांत न जानिया, तुम सार नाही अवर हरे। ऊंचा नहीं कहना मन में रहना, आपे जाने आप करे। जब आसा अंदेसा तभी क्यों कर एक कहे, आसा पितर रहे निराशा तो नानक एक मिलाए। इन बिद सागर तरिए, जीवत्या उमरिया।

ध्यान रूप होय आसन पावे सतनाम ताड़ी तत लावे नानक बोले अमृत बाणी सुन में चंद्रावधुनी स्वाणी।

कर्म पुरखा वो जो ब्रह्म ज्ञानी धुन में ध्यान ध्यान में जानिया गुरमुख कथ कहानी मन में जोत जोत में मनवा

छादन भोजन मांगत भाग खुदया दुष्ट जल दुख आगे गो गुरमत नहीं लेने दुर्मत मत कोई गुरमत नहीं लेने दुर्मत पत कोई गुरमत भगत पावे जन कोई जोगे जुगत साहद करवासा एक दृष्टि को कर देखा भेख्या पाए शब्द त्रिप्रताशाए

नको यीशु जय बुद्धे मन हर जप जप जपाया नाम हिण फिर सह नग तय तन कास कास नक वढाया मुख जगजीवन दी बाल लै स्वामी हृदय अंतर नाम वसाया।

ऊपर आवो, ऐसे सेवक में आवो, आपस ऊपर सब जानो तो दरगाह सुख पावो संतो, ऐसी कथा कहानी। स्वर पवित्र नरदे पवित्रा बिन बोले गुरमुख बाणी, राव पर पंच चोट सैर कर बैसो झूठा कहो न कोई, सरगुर मिलो नवे नित पावो इन बतट बलोई, परम चुकावो गुरमुख लिवलावो आत्म चिन्हो पाई, निकट कर दान सदा प्रभु हाजर के सो कहो बुराई, सदगुण मिले मार्ग मुक्ता सहज मिले स्वामी।

uno emeleo tugdai una kai bata tatzar parambad paya churna kato bata barna sakonda satu hai satyal ka para atul atha adol swami nanak hasma hamara aram kri mahalla pinma tu dana tu abhetal tu he tunja atmari bade तू डोल कदर ले नाही ताम कैसी ताती एक तू ही एक तू राया तोग्र पाते सुख पाया राव तुम सागरम हंस तुम्हारे तुम मानक लाला तुम देहो तिल संग न मानो

हम पे संग गाए मिलत मिलत मिलत मिल रहे या नानक न जाए राम कली महला पंजमा कर कर ताल पखावज नैनो माथे वधेर बाबा करनो मद श्री बाजे देवा तुन आगा जा नृत्य कराए कर मनवा नाचे आने कुंगर साजा राम को नृत्यकारी पेख पेखन हार दयाला जेता साधो सिगारी राव

आवा हुआ चांद सूरज दोय जरे चिरागा चौकुंड पितर राखे दास पातो पंच संगीता एका पितर साथे पेन पेन होए पाप दिखावे सब निरारी पाखे कर कर निरत होवे दिन राते कर कर वाजे तुरा एक न जावे एक पवावे काय जाए होए तुरा को नानक सो बोना नाचे जस गोर पेट पूरा राम करी महला पंजवा ओंकार एक धुन एक एक राग लाप एक देसी एक दिखावे कोरिया व्याप एका सुरत का ही सेवा को गुरते जापै पलो पलो रे कीर्तनिया राम रमा रामा गुण गाओ छोड़ मैं के तंद स्वाव राओ

एक शब्द बंद पाले नारदे नरहर जान हदूरे कुंगर खड़क त्याग सूरे सहज आनंद दिखावे पावे एक एहो नित्यकारी जन्म न आवे जेको अपने ठाकुर पावे कोट माधे कीर्तन गावे साध संगत को साध संगत की जावो टेक कौ नानक तिस कीर्तन एक राम कली महला पंजमा कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई सेवे गुसाइया कोई अल्लाह कारण करण करीम कृपा धार रहीम राहो कोई नावे तीर्थ कोई हज जाए कोई करे पूजा कोई सिर निवाए कोई पढ़े वेद कोई कतेब कोई ओढ़े नील कोई सुफेद कोई कहे तुर्क कोई कहे हिंदू कोई बाछे पिस कोई सुर गिंदु क्यों नाने जन कहो कम बचाता प्रभ साहिब का तिन पे जाता राम कृम हल्ला पंजमा पवने में पवन समाया ज्योति में ज्योत रल जाया माटी माटी होई एक रोवनारे की कमन टेको कौन मुआ रे कौन मुआ ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बिचारा है तो चलत पे आ रहा हो अगली किसी खबर ना पाई रो बनार भी उड़ सदाई ब्रह्म

तो मन कड़वी एका बात बकान दस तीम लेको कया सा पी जोगी भेद ना लया किंकुरिया उपवाजे जोगी अमत वारो रेरा प्रथम वसया सरका खेड़ा तृतीय में किस पया दुतेड़ा द्वितीय अर्ध वर समाया एक आता एक दिखाया एक सूत परोए मणिए गाठी भिन्न भिन्न भिन्न तिन तनिय प्रति माला बहु बिद पाए खिचिया सूत ताई छाए चौमे कै मट किया तिगड़े थान अनिक खिड़किया खोज खो

रहुदा के बंधन काटे राय सो नर बहर न जो नहीं पाए जाके अंतर प्रगटे हो आप तको ना दुख धूप संताप लाल रतन तिस पाल परया सुल कुटुंब जन ल तरिया ना किस भरम न दुबदा दूजा एको एक निरंजन पूजा जात कस देखो आप दयाल को नानी प्रमिले रसाल राम करी महला पंचमा तंत जुड़ गई अपनी तारी प्रभ की आज्ञा लगी प्यारी जो किच कर सो मन मेरे मीठा ताए चद नैनो डिठा अब मोह जानी रे मेरी गई बलाए बज गई।

ब्रह्मपुरंत बासन भगत संग प्रभु गोष्ठ करत ते हरख न सोग न जन्म न मरत कर कृपा जिसे आप दुआया साध संग तिन हर धन पाया दयाल पुरख नानक अरदास हर मेरी वर्तन हर मेरी रास राम कली महला पंजवा महिमा न जाने भेद ब्रह्मे नहीं जाने भेद अवतार न जाने अंत परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत अपनी गत आप जाने सुन सुनिया ब्रह्म खाने रहाओ संकरा नहीं जाने पेव खोई तुहारे देव देविया नहीं जाने मरम सभी उपर लख पार ब्रह्म अपने रंग करता खेल आप छोड़े आपे मेल आपे पर मेक भगती लाए अपना की आप जनाए संतन की सुन साची साखी सो बोलै जो पिखे आखी नहीं लेप तिस पुन न पाप नानक प्रभ आपे आप राम कली महला पंजवा किछु काज न कियो जान सुरत नाही किछ गया सुरत मत नाही किछ ज्ञान जाता सील नहीं धर्म कछु न जानू कैसा करम ठाकर प्रीतम प्रभ मेरे तुझ बिन दूजा वरना कोई भूले चूके सब तेरे रहा रिदना बोधना सिद्ध प्रगास बिखे व्याद के गाव मैं बास करनहार मेरे प्रभ एक नाम तेरे की मन में टेक सुन सुन जीव माने हो विश्राम पाप खंडन प्रभ तेरो नाम तू अगणत जी का जाता जिसे जनाब तिन तू जाता जो ज्योतिष तेरी आस सगले अराधे प्रभ गुण तास नानक दास तेरे कुरबान बेअंत साहब मेरा मेहरबान राम कली महला पंजवा राखण हार दयाल कोट नाव खंडे निमुख ख्याल सगलियारा दे जंत मिलिए प्रभ गुर मिल मंत जीन को दाता मेरा प्रभ पूर्ण परमेश्वर स्वामी घड़ घड़ राता मेरा प्रभ रहा ताकि गही मने ओट बंधन ते होई छोट हृदय जप परमानंद मन मह भय आनंद तारण तरण हर सरण जीवन रूप हर चरण संतन कै प्राण आधार उचे ते उचे अपार सा मत सार जे तर समरी जय कर कृपा जिसे आप दीजै

0: साध संग बस्त गोचर लहे,
1: साधु के संग अजर सहे,
0: साध के संग बसे थान ऊंचे,
1: साधु के संग महल पहुंचे,
0: साध के संग दिड़े सब धर्म,
1: साध के संग केवल पार ब्रह्म,
0: साध के संग पार